فيه.

إنها بين

ولا تكتم الشهادة.

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क सिंध।

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज। आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर।

वफाकी हुकूमत पारां सरकारी मुलाज़मनि जे पघारनि में 10 खां 15% ताईं वाध करण ते गौर। नाणे वारी वज़ारत पघारनि में वाध बाबति तजवीज़ूं वज़ीर आज़म खे मोकिले छॾियूं। ज़रियुनि जो चवण आहे त नाणे वारे वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ सरकारी मुलाज़मनि जे पघारनि में 10 खां 15% ताईं वाध करण जी

0: सिंध में ज़रे पाणी जी खोड़ 56% ताईं पहुची वई। कोटली बैराज ते 56%, गुडू बैराज ते 30% खोड़ बरकरार। सखर बैराज ते पाणी जी शदीद खोड़। आबादगार सारेलो बेजो पोखण लाइ परेशान। गुडू बैराज जो मथां वेकरो 75,000 ऐं हेठां वेकरो 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज जो मथां वेकरो 50,000 ऐं हेठां 18,500 क्यूसिक थी वियो। कोटली बैराज वटि मथां वेकरो 11,000 क्यूसिक थी वियो। डाउन स्ट्रीम में पाणी छोड़ मुकमल तौर ते बंदि कयो वियो। सिंध में पाणी जो बहरान संगीन थियण सबबि वणनि समेत ॿिया पोखियल फसल पाणी न मिलण सबबि सुकण लॻा। पंजाब जी बि होड़ बरक़रार। तकरारी फ्लड केनाल ज़रिए सिंधू दरिया मां पाणी खणणु जारी। कोटली डाउन स्ट्रीम में पाणी छोड़ बंदि थियण बाद दरिया में वारियूं उॾामण लॻी। कोटली बैराज मां निकिरंदड़ वहन में पाणी घटिजी वियो। डाउन स्ट्रीम में पाणी बंदि थियण बाद इंसान तोड़े जानवर पीअण जे पाणी लाइ बि परेशान। चर्चो सिजावत वदीन टंडो मोहम्मद खान में सूरतहाल संगीन। हैदराबाद डिवीज़न जे ॿिन्ही ज़िलनि ऐं मीरपुर ख़ास डिवीज़न में बि पाणी बहरान संगीन थी वियो। पाणी न मिलण सबबि पोखियल फसल बि सुकण लॻा। मीरपुर ख़ास, शहीद बेनज़ीर आबाद, सखर ऐं लाड़काने डिवीज़न में बि आबादगार पाणीअ लाइ परेशान। फैज़गंज, चोट जमाली ऐं ॿियनि शहरनि में आबादगारनि जा एहतजाज। हुकूमत खां ज़री पाणी जी खोट ख़तम करण जो मुतालबो। सिविल अस्पताल गोइता में तेज़ाब हारे ज़ख़्मी कयल लेडी डॉक्टर इलाज लाइ कराची मुंतकिल। डॉक्टर महानूर नासिर खे एयर एम्बुलेंस वसीले कराची मुंतकिल कयो वियो। डॉक्टर जो चवण आहे त डॉक्टर महानूर नासिर होश में आहे ऐं पाण पंहिंजी मेडिकल हिस्ट्री फराम कई। संदसि हालत ख़तरे खां ॿाहिरि आहे। तेज़ाब सबबि संदसि 12-15% जिस्म मुतासिर थियो। कोइता पुलिस पारां वाके में मुलिस जवाबदार खे मुक़ाबले में मारण जी दावा। पुलिस जो चवण आहे त जवाबदार गिरफ़्तारीअ जी कोशिश दौरान फायरिंग जी ॾेवर दौरान गोली लॻण सबबि मारिजी वियो। कानपुर महर में नारी खे तेज़ाब हारे ज़ख़्मी कंदड़ जवाबदार मुबैना मुक़ाबले में ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार। जवाबदार मियां दाद महर खे पुलिस नरोबाग वटि मुक़ाबले बाद ज़ख़्मी हालत में गिरफ़्तार करे वरितो। जवाबदार नारी शर्मा महर मथां मुबैना तौर तेज़ाब हारे ज़ख़्मी करे छॾियो हो। वाके जो केस दाख़िल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवांजे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, फालेज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, पर जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
4: ढाडो सुठो
3: GAFM 88 नेटवर्क,
5: सिंध की आवाज।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार क्यों क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलबीब का अलबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेकबुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और एसएमएस अलर्ट फैसिलिटी एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो जी हाँ हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इनन सबनिन बीमारन जो कामयाब इलाज कयो विंदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 AM खां शाम 6 AM ताई बरोज जुमो 12 AM ताई एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763
0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो. डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क.

के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज। शेरीज स्टूडियो प्रेजेंट्स।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

50,480 वोटर पंहिंजे वोट जो आइनी हक़ इस्तेमाल कंदा। आई जी गिलगित बल्तिस्तान जो चवण आहे त सिक्योरिटी जा इंतज़ाम सख़्त कया विया आहिनि। 17,000

0: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: अजरक के रंगों से रंगी,
2: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
1: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

हेलो सर, आप जो लिखना चाह रहे थे मुझे नहीं समझ आया कि आप क्या लिखना चाह रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे और क्या लिखा है आपने, इस बात का क्या मतलब है मुझे नहीं पता, लेकिन जो मुझे समझ आया मैंने आपको आपके फ्रेंड के नाम जो है रीड आउट करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे साथ और कौन मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद तो बहुत सारे लोग हैं और उन बहुत सारे लोग तो हैं ही मौजूद, तो देखते हैं ऐसे में समय कौन करता है। ऐसे में हमें ज्वाइन करते हैं सक्कर के लिए मसूर अहमद, कहते हैं कि और जिस तरह जी सवाल का जवाब है। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक, सवाल का जवाब उन्होंने दिया है। राइट हो तो अपने पसंद का कोई भी सॉन्ग नाम कर देना। बिल्कुल जी, मैं अपने पसंद का कोई भी सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट करूंगी। कुछ ही देर में अपना सॉन्ग, अपने पसंद का सॉन्ग आपके लिए प्ले करते हैं। आपका जवाब बिल्कुल ठीक है और जवाब मैं बिल्कुल लास्ट में सबको वैसे भी बताती जाऊंगी, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बताती हूँ, जिसका अगर सॉन्ग प्ले करती जाती हूँ तो फिर उससे ये होता है कि यार उसको पता चल जाता है कि उसका जवाब बिल्कुल ठीक है। अगर इस तरीके से मैं बता दूंगी तो जिसका नहीं पता होता वो अपना दिमाग चलाना जरूरी नहीं समझता, तो इसलिए मैं नहीं रिपीट करती। और चीज के अलावा हमारे साथ मौजूद हैं सक्कर के लिए, कहते हैं कि वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, कहते हैं कि सना आप अपने हाथों को ठंडे पानी से बार बार धो लें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब मैं हाथों को कैसे बार बार धोऊं, मेरे हाथों में नील हो गए हैं, वो चोट लगने से जो होते हैं ना ब्लू ब्लू वो हो गए हैं और इतना दर्द कर रहे हैं कि मैं इसको कैसे धोऊं और इतना दर्द हो रहा है मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा। थैंक यू फॉर दी आपकी एडवाइस जो आपने मुझे दी है, मैं इम्प्लीमेंट करते हुए सोचूंगी इस बारे में। जब भी कोई इम्प्लीमेंट मैंने किया तो मैंने कहा एडवाइस आप लोगों से लूँ।

और देखते हैं हमारे साथ मौजूद हैं शक्कर के लिए कहते हैं सदाकत हुसैन मीरानी साहब बचल शाह मियानी शक्कर छोटे बाजी चोट बाजी पहले फसल में न्यूरोलॉजी से इलाज होगा ओके जी और आपके क्या लिखा है आपने

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध धरती के मतवाले हम मीरपुर।

हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज़ मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलनि फालेज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99

देखिए सिलसिले 2 जनवरी से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।

तो जी ये सॉन्ग मैंने प्ले किया था आप लोगों के लिए, मसरूर अहमद के लिए और इकबाल अशारी के लिए, जिसने मुझे मेरे सवाल का जवाब दिया था और उसने जो है जवाब देने के साथ अपना सॉन्ग नहीं बताया था, मतलब उन्होंने इतना यकीन किया था कि मैं अपने पसंद का कोई भी सॉन्ग प्ले करूं, तो मैंने यहाँ पर सॉन्ग एक प्ले किया था आप दोनों के लिए। और ऐसे ही मैं अपना सवाल का जवाब आपको बताती हूँ कि जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, कि सवाल ये था मेरा कि आप लोगों ने मुझे ये बताना था कि ऐसा कौन सा गेम है जिसके पीछे रहने वाला जीत जाता है। तो जी वो है रस्सा खींचने वाला गेम, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्सा कशी गेम। जैसे कि अगर आप दोनों साइड से अगर पाँच बंदे होते हैं, इधर से भी पाँच बंदे होते हैं, तो जो हम रस्सी खींचने वाला गेम खेलते थे बचपन में, तो जी वही गेम है जिसके पीछे रहने वाला वो जीत जाता है। बिल्कुल ठीक आंसर दिया जिसने भी मुझे अभी तक जवाब दिया। और सॉन्ग एक और सॉन्ग था, एक और भाई ने हमें सॉन्ग बताया था सवाल का जवाब देने के साथ, देख लेते हैं उनका कौन सा सॉन्ग था, वो सॉन्ग भी हम जरूर प्ले करेंगे। अच्छा नहीं, कोई मतलब ऐसा सॉन्ग नहीं था, उन्होंने यही कहा था कि अपने सॉन्ग का कोई भी सॉन्ग प्ले कर दिएगा। तो जी मैं जो है मैंने अपने पसंद का कोई भी सॉन्ग प्ले किया था। और ऐसे ही है कि इसके अलावा और भी सॉन्ग्स हमारे पास मौजूद हैं, अभी हमारे पास आधा घंटा रिमेनिंग बचा है, तो इस आधे घंटे में सुनेंगे हम बहुत सारे मजे मजे के सॉन्ग्स। तो जी सबसे पहले ये बताएं कि आप लोग कौन सा सिटी से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, कौन सा सिटी से मुझे सुन रहे हैं, और वहाँ पर गर्मी कैसी है और कैसे हालात हैं, और इस गर्मी में आप लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, लाइट्स

ऐसे ही है कि आप लोगों के साथ भी होती होंगी या हर एक जिम्मेदार शख्स के ऊपर ये चीजें होती हैं, वो कितना तकलीफ के साथ बर्दाश्त करता है ये आप लोग भी जानते होंगे, ये वो शख्स जानता है जिसकी चीजें गुजरती हैं। मेरे सब भी चीजें होती हैं, बंदा वही बात कर रहा होता है जो उसके ऊपर गुजरा होता है। अभी अगर जिसके ऊपर ये नहीं गुजरेगा वो तो हंस के ही बोलेगा ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाता है। नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज़ जिस हिसाब से बात, कोई भी बात हो, अच्छी हो बुरी हो,

0: मतलब हमारे पास एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने का, वापस आएंगे, वापस आके करेंगे बाकी की बातें. अभी चलते हैं हम एक छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाने की कर रहे हैं. नहीं रहेगा मेरे साथ.
1: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
2: उसी खिपसे की बनी है आवाज.
1: जीए एफएम 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज. खूबसूरती असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: सोना साई, कुछ खबर अथव?
4: छा थियो सोनी?
3: बिन दिन खां सोलर वारी बैटरी खराब थी पई आहे. नई बैटरी कदे आणींदा?
4: सोनी, इन महंगाई जे दौर में नई बैटरी जी जरूरत ई कोने. पंहिंजी पुराणी बैटरी सरगोदा बैटरी सर्विस वारनि ॾांहुं अॼु ई खणी पियो वञा. उहे अधु क़ीमत में पुराणी बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे सफ़ा नओ करे छॾींदा.
3: साईं, पोइ इहा बैटरी जल्दी त ख़राब कोन थींदी?
4: न न सोनी, सरगोदा बैटरी सर्विस वारा 6 महीना गारंटी पिया ॾियनि बैटरीअ जी.
3: वाह वाह, पोइ साईं जल्दी करियो, हाणे ई वञो ऐं बैटरी ठाराए अचो.
4: सरगोदा बैटरी सर्विस तां पंहिंजे यूपीएस ट्रैक्टर ऐं सोलर वग़ैरह जी ख़राब बैटरीअ में नयूं प्लेटूं ऐं सेल लॻाए बैटरीअ खे नओं बणायो. असां वटि भगल ऐं फाटल बैटरी जो कमु तसली बख़्श ऐं रियायती कयो वेंदो आहे.
5: हाणे सरगोदा बैटरी सर्विस ते सोलर यूपीएस इन्वर्टर जी ख़राब ट्यूबलर बैटरीअ में ओरिजिनल प्लेटूं ऐं सेल पिणु लॻाया वञनि था.
4: मिलंदड़ जुलंदड़ कम खां धोखो न खाईंदा, सुठे ऐं मयारी कम जे लाइ अॼु ई तशरीफ़ आणींदा. सरगोदा बैटरी सर्विस, म्युनिसिपल स्टेडियम नज़द नजम मेडिकल स्टोर वारी घिटी, पुराणो बस स्टैंड लाड़काणो. राबते जे लाइ मोहम्मद फारूक, मोबाइल नंबर 03156829924.
6: डॉक्टर नूर हुसैन पुसियो, MBBS FCPS, तजुर्बेकार ऐं माहिर जनरल फिज़िशियन. हिते मेडिसिन सां लाॻापियल सभिनी बीमारियुनि जो इलाज कयो वञे थो, जंहिंमें मलेरिया जो बुखार, टाइफाइड, खंघि, नज़लो, ज़ुकाम, छातीअ जा इन्फेक्शन, शुगर, ब्लड प्रेशर, गैस, अल्सर, कब्ज़, मैदे ऐं हाज़मे जा मसाला, थायराइड जा मसाला, वाइटमिन्स जी कमी, थकावट, कमज़ोरी, जिगर ऐं पेट जूं बीमारियूं, जोड़नि जो सूर ऐं दिलि जे शुरूआती बीमारियुनि जो बहितरीन इलाज कयो वञे. डॉक्टर नूर हुसैन पुसियो, माहिर जनरल फिजिशियन. एड्रेस: तैमूर हेल्थ कॉम्प्लेक्स, साम्हूं आर्ट्स काउंसिल, सचल कॉलोनी, लाड़काणो. टाइम: रोजानो शाम जो 4 वॻे खां रात जो 9 वॻे ताईं. आचर ते सुबुह जो 10 वॻे खां शाम जो 3 वॻे ताईं. राबते जे लाइ मोबाइल नंबर 03051231559.
7: अदा, छा ॻाल्हि आहे? ॾाढो परेशान पियो लॻी.
8: भाउ, छा कयां, 2 सालनि खां अमर पथरीनि जे मर्ज़ में मुब्तला आहे. डॉक्टर ऑपरेशन जो चवनि था, गरी फीस जो ॿुधी हर दफ़े मायूस थी मोटी ईंदो आहियां.
7: भाउ, मायूस न थी, अॼु मां तोखे अलाह वारनि इंसाननि जो ॾसु थो ॾियां, जिन पंहिंजे अमर जे नाले ते हिकु ख़ैराती इदारो मुमताज़ वेलफेयर खोलियो आहे, जंहिं में मरीज़नि जी चकास ऐं ऑपरेशन मुफ़्त में कनि था.
8: जी हाँ, बा अख़लाक़, बा किरदार, इंसान दोस्त, आला तालीम याफ्ता प्रोफेसर डॉक्टर साजिद अली अब्बासी ऐं संदसि घरवारी डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी MBBS FCPS यूरोलॉजी जी डिग्री अल्लाह पाक जी राह में वक्फ़ करे छॾी आहे. हिते गुर्दे ऐं मसाने में पथरी, कैंसर, इन्फेक्शन, पेशाब में जलन ऐं रुकावट, बेओलादी ऐं गुदूद जो ऑपरेशन जदीद औज़ारनि ऐं मशीनुनि सां ऐं लेज़र ज़रिए इंडोस्कोपिक ऐं ओपन ऑपरेशन कयो वञे थो. यादि रखंदा, रोज़ानो चकास ऐं अल्ट्रासाउंड फ्रीअ में कयो वञे थो, जंहिं में ऑपरेशन जे केस जी फीस नाहे वरती वेंदी. बस ऑपरेशन जो ॿियो थोरो ख़र्च, मसलन दवाउनि ऐं कमरे जी फीस मरीज़ पाण ॾींदा. डॉक्टर साजिद अब्बासी ऐं डॉक्टर रीना साजिद अब्बासी, वेहण जो हंधु मुमताज़ वेलफेयर क्लिनिक, अलनिसा मेडिकल सेंटर, सिटी चौक, सचल कॉलोनी, लाड़काणो. टाइम: रोज़ानो शाम जो 4 बजे खां रात जो 8 बजे ताईं. आचर ते सुबुह जो 12 बजे खां शाम जो 4 बजे ताईं. राबते जे लाइ मुस्लिम अब्बासी, मोबाइल नंबर 03342241869.
9: खुशखबरी, कराची जी माहिर डॉक्टर अनुषा कुमारी, फिजियोथेरेपिस्ट, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर लाड़काणे में मुकमल प्रोफेशनल फिज़िकल रिहेबिलिटेशन मशकूं ऐं जदीद तरीक़े जो इलाज करे रही आहे, जंहिंमें रीढ़ जी हॾी, हॾनि ऐं जोड़नि ऐं फ्रैक्चर जा मसला, कुल्हे जो ॼमी वञणु, हथनि ऐं पेरनि जो सुन थियणु, सीपी चाइल्ड, स्पोर्ट्स इंजरी, पठनि में छिकताण, मोहरनि जा मसाला, कंध, मथे, गोॾनि ऐं चेल जो सूर, लकवा ऐं मोच, फालिज यानी अधरंगो ऐं चेस्ट फिज़ियोथेरेपी जो इलाज कयो वञे थो. यादि रखनि, डॉक्टर अनुषा कुमारी फिजियोथेरेपी में मरीजन लाइ फीस में 50% रियायत जो ऐलान कयो आहे, जीअं ग़रीब तोड़े.

हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं बरोज जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरण। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99

0: के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क सिंह की आवाज।
1: अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब PHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालेज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327 99

जी मैंने कर दिया है उनका ये पसंदीदा सॉन्ग प्ले तेरे बिन, और उस चीज सॉन्ग हमने प्ले कर दिया है, वो लास्ट में मैं प्ले करती जाऊंगी। तो जी यहाँ पर आपको पता है कि जी हमारे पास टाइम होता है यहाँ पर बिल्कुल ही 5 मिनट और 5 मिनट 6 मिनट बचे हैं, 6 मिनट के अंदर करनी है हमने वाइंड अप और मिलेंगे फिर हम एक नए सेगमेंट में नए एक सवाल के साथ अगले इतवार को। रहेगा मेरे साथ और जाएगा नहीं कहीं। तो यहाँ पर हम लोग सॉन्ग प्ले कर दिया, सॉन्ग प्ले कर दिया है हमने तेरे बिन ओएसटी सॉन्ग है। क्या बात है, बेवफाओं से भी तो प्यार होता है। जी बिल्कुल, प्यार ही बेवफा से होता है। आपको क्या पता, जो बेवफा होता है वही दिल को पसंद आ रहा होता है, लेकिन जब बाद में धोखा मिलता है तो पता चलता है यार ये तो बंदा बेवफा था, होता वो पहले से नजर हमें बाद में आता है जब हम अपने दिल को तकलीफ पहुंचा चुके होते हैं, तब हमें ये चीज समझ आ रही होती है। सॉन्ग कर दिया पहले तो जी मिलेंगे अगले इतवार को। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में हमेशा आप लोग रहेंगे मौजूद। और तेरे बिन यूएसटी को सॉन्ग कर दिया है मैंने प्ले, और सुनते हैं सॉन्ग का भी मिलकर सब। रखिएगा अपना ख्याल, मिलेंगे अल्लाह हाफिज़ अगले इतवार को एक नए सवाल के साथ। दुआ में याद रखिएगा, मेरी भी दुआ में आप लोग हमेशा मौजूद हैं।

तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है तुम्हारी उम्मीद मौजज़ों के बादशाह से है फिर क्यों परेशान हो तुम्हारे पास तो अल्लाह है सुनब दंदड़ा सबनी समात उनकी मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम दुआओं के समंदर जादू की बारिश सलासवल खजानों के साथ दुआ है पलसी पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जागता जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत सांस से तारों तक हमसे खुशी तक दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे सो आमीन या रब्बल आलमीन बिल्कुल जनाब आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क हमारे साथ मौजूद है यहां पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरेंड मेहरापुर माथली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो हां जी जनाब प्रोग्राम है व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं खूबसूरत होते जा रहे हैं और खूबसूरती को हमेशा के लिए जी बिल्कुल हेलो हाय बोलते जा रहे क्योंकि आप सारे लोग जो है ना ये सारे लोगों को जरा जरूरत है कि आप लोग अपनी खूबसूरती को जरा बढ़ाएं तो खूबसूरती को बढ़ाएं और खूबसूरती को बढ़ाने के लिए आपके पास व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है तो जनाब अगर हम यहाँ पर जिक्र करें व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का तो भाई गलत बात नहीं होगी क्योंकि आप लोगों को बताना बहुत ज्यादा जरूरी है और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं आप जानेंगे इस प्रोग्राम में कि किस तरीके कार से आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी खूबसूरती को बढ़ाइए खूबसूरती को बढ़ाते बढ़ाते खूबसूरत ही हो जाइए ठीक है ओके जी तो जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है जितनी भी समाते हो तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है बिल्कुल जी आपकी मोहब्बत हो समात हो और चाहत होगा बेहद वाला शुक्रिया और साथ ही साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं सो लिसनर्स प्रेजेंट द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान नाम तो सुनाई होगा तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब है मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं और जरा अपने हाल चाल भी बताइए सो डियर लिसनर्स हालत कैसे ही आपकी हालत उम्मीद इन शदीद इनके बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सुपरकूल मूड के साथ सुपरकूल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं आपको पता है ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां

गुड आफ्टरनून, साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब आप जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए, क्योंकि आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाने का काम करती भैया आपकी सिद्रा, तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसे करते ही आकर से प्रोग्राम कर लेते हैं। आगे से प्रोग्राम किया जाएगा एक बहुत ब्यूटीफुल सी नात के साथ जो कि आतिफ असलम की आवाज में होने वाली है, तो नात सुनती है उसके बाद ना हम जैसे ही वापस आते हैं तो बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। तो बिल्कुल आप सुन रहे हैं प्रोग्राम व्हाइट एश एंड ई स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड ई स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावर, इस्तेमाल करते जाइए और खूबसूरत होते जाइए।

क्या बात है जी, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी नाच यहाँ पर आपने एंजॉय करी और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी.

0: प्रोडक्ट्स के तावन से आपके सिद्धराव के साथ मौजूद मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल यानी कि टॉपिक क्या पूछा जा रहा है। तो आज के सवाल की बात की जाए तो आज का मेरा आप लोगों से सवाल ये होने वाला है कि आप मुझे बताएं, जैसे कि आजकल ये चल रहा है, लोग आजकल जो है ना ऑनलाइन दोस्तियों को, ऑनलाइन रिश्तेदारियों को ज्यादा जो ना वो वैल्यू दे रहे थे, उनकी नजर में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजकल देखा जाए तो ऑफलाइन जितनी भी फ्रेंडशिप है या फिर जितने भी ऑफलाइन हम काम कर रहे होते हैं, तो उन चीजों को देखा जाए तो वो आजकल हम जरा उन्हें सोचते हैं कि ये क्या ही बोरिंग जिंदगी है। ऑनलाइन हमें जितना सब कुछ जो ना वो सुहाना सुहाना लग रहा होता है, तो क्या वाकई ऐसा होता है? ये तो खैर हम बात की बातें बाद में करेंगे, लेकिन आज आप मुझे जरा ये बताइए कि ऑनलाइन दोस्ती बेहतर है या फिर रियल लाइफ दोस्ती बेहतर है? आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है कि ऑनलाइन दोस्तियां, ऑनलाइन रिश्तेदारियां, ऑनलाइन भाईचारा, ये आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन दोस्ती बेहतर है या फिर रियल लाइफ दोस्ती बेहतर है? ऐसे के साथ साथ अगर आप हमारा शो सुन रहे हैं, शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं, क्या बात है, तो जनाब ऐसा कीजिए, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जीए लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है, जीए लाड़काना FM 88.8 आप सर्च कीजिए, आपको इजीली हमारा पेज मिल जाएगा। वहां पर आप आइए, आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एज एनजी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिलती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बता पाए जनाब की मार्केट में व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो चुके हैं, एंट्रियां मार चुके हैं, आप भी जाइए और परचेज कीजिए। और साथ साथ मुझे बताइए कि ऑनलाइन दोस्ती या फिर रियल लाइफ दोस्ती बेहतर है। और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं, कहां से सुन रहे हैं बताइए ना, और साथ ही साथ यहां पर आपको मैं बताऊंगी व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में क्यों ना बताऊं भाई, ये क्योंकि प्रोडक्ट्स ही ऐसे तैयार किए गए जिनके बारे में बताने को दिल चाहता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भाई आपकी खूबसूरती आपके पास मौजूद रहे हमेशा, तो आप लोगों ने व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब करना है। और व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब ना सिर्फ आप लोगों की खूबसूरती को बढ़ाएगा बल्कि आप लोगों की खूबसूरती में चार चांद भी लगाएगा। आप लोगों का ये इंतखाब, आप सोचेंगे कि भाई जान क्या ही बात है, हम सिद्रा की बात क्यों नहीं मान रहे थे, तो सिद्रा की बात मानिए जी, सिद्रा कदे भी तमाखे जी का ना गलत सलाह कौन दुनिया। बिल्कुल जी, मुझे लिसनर्स है ना मुझे सफा घना प्यारा है, मुझे एक ख्वाहिश हूँ तो तमाम जगह सब लिसनर्स असा के बुधो पाया तो ही सब जगह ना पाँच खूबसूरती जो ख्याल रखन, पाँचों ख्याल रखन, हमेशा खूबसूरत दिखार जो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करना हलो कड़ा कड़ा प्रोडक्ट्स हैं तमाम के बिल्कुल बुधाईंदा। अगर तुम पाँच एरिया में अवेलेबल कराइन चाहो था तो तुम डायल करना 03-15-799-0595 नंबर डायल कर जी तुम एरिया में अवेलेबल थी वन व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स तुम आराम से इजीली वही वी अचो। ओके जी, यहाँ पर फिरोज अली भरोई भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, आपको शो पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, ठीक है बताएं कैसे हैं। लिखते हैं, इंसान कितना भी सीधा और नेक क्यों ना हो, अगर उसका अक्स दिखाने वाला टेढ़ा हो और बदयांत हो तो हकीकत बिगड़ जाती है, इसलिए हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत करो क्योंकि आईना साफ ना हो तो अक्स भी, हाँ ये तो सही बात है, अक्स भी सही नजर नहीं आता। ओके जी, आजकल लोग सच को साइड पर रखकर सुनी सुनाई बातों पर ज्यादा यकीन करते हैं। और मुजाहिद मरी हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं, मैं मुजाहिद मरी कराची से आपका शो सुन रहा हूँ, सलाम दीजिएगा मेरे वलीद साहब फौजी रसूल बख्श मरी को। ओके जी, और किशोर भाई कहते हैं, हेलो हाय, हम भी अचकया आदि, कैसे कैसा आयो, वहाँ खुश आयो नी, हवाओं में आयो नी, नावान में तो खैर कौन आया पर खुश दादू आया। और हिदायतुल्लाह क्या कहते हैं, तेरा मिलना बिछड़ जाना, बिछड़ कर फिर से मिल जाना, हमेशा की जुदाई का इशारा हो भी सकता है, ये ना समझो कि तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो, मोहब्बत जुर्म है और हमसे दोबारा हो भी सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ।
1: इट्स टाइम टू कमर्शियल ब्रेक। अब आपकी खूबसूरती का

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाँ हैरत तंगे जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आय होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाने अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश, गुर्दे की पथरी, सोज, पुरानी खंघ, जुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियन की खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर से हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी बादी बवासीर, इन सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया है। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक, बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड सकर। अधिक मशवरे रबते 0327-99-84-763।
3: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
4: सुनते रहो GFM 90.8।

मेरे पास सेंड करती जा रही है. इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे पास जो ये इतने प्यारे प्रोडक्ट्स मौजूद है, तो इनके बारे में आप लोगों को समझाना, आप लोगों को बताना, आप लोगों के अंदर जो है ना ये चीजों की नॉलेज लाना कि अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें तो आप लोगों को किस तरह से जो है ना वो खूबसूरती मिलने वाली है. तो सबसे पहली बात जो ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट्स कितने हैं और कौन कौन से हैं. तो जिन लोगों को नहीं पता उनको बताते हैं, बाकी जिन लोगों को पता है उनसे मैं पूछूंगी जरूर. भाई जरा आप याद रखिए ये जो मेरी बातें हैं ना ये गौर से सुना करें ताकि कभी जब आप लोगों से पूछा जाए तो आप इजीली बता सकें. तो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहे हैं तो इन तमाम चीजों की आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए. ओके जनाब, सर सबसे पहले हम जरा यहाँ पर बात करेंगे व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम और व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए मौजूद है. व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है ये जनाब एक नाइट क्रीम है, इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद आप लोगों के पास व्हाइट एश ब्यूटी सोप मौजूद है, यानी कि व्हाइट एश जो साबुन भी तमाम मौजूद है. उनका अलावा व्हाइट एश जो फेस वॉश भी तमाम मौजूद है. अगर तुम्हारा साबुन लगाईंदा तो तुम्हारा साबुन लगाईंदा, अगर तुम फेस वॉश लगाईंदा आयो तो तुम फेस वॉश लगाईंदा. ठीक है, उनका

आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

धरते दिल हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है प्यारी? अच्छा नूरेसन तुरो भाई, कहते हैं आपने थर्सडे वाले शो में स्मार्ट किशोर के दो गाने प्ले किए थे, ये तो आपने बिल्कुल एक झूठ बोल दिया कि मैंने दो गाने लगाए थे, शायद एक ही भी लगाया हो उनका। और कहते हैं मैं आपकी, हाँ जी बिल्कुल, आप कंप्लेन कीजिए, जो बात गलत हो तो उसके ऊपर आप बेशक बोला करें, लेकिन जो बात हो ही ना तो उसके ऊपर बोलने का आपको कोई हक नहीं है। यह हकीकत आ जाएगी, जितनी इज्जत निभिया ना ओतरो ही मथे थे चढ़ी वेंदो। बोलना तो खैर मैं बहुत कुछ आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा आपका लिहाज कर रही हूँ, और जो शायद करना चाहिए थोड़ा ना आप अपने दिमाग का जरा इलाज करवाई, मुझे लग रहा है कि थोड़ा आपका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। और उन खां इलावा जी को पोस्ट के लाइक एंड शेयर करियो, जन मानो अन्य तीन कौन कहो है। अच्छा हमदुल्ला मला खेल हमारे दिन काफी दिनों के बाद हमारे शो में शामिल हो रहे, और कहते हैं कि मैं कोयटा से आपका शो सुन रहा हूँ, वेलकम जी वेलकम, बहुत शुक्रिया। हिदायतुल्ला कहते हैं कि सिद्रा वो पूछना ये था कि मुल्क भर में आम का कत्ल हो रहा है तो उसे कत्ले आम कहा जा सकता है? बिल्कुल जी कहा जा सकता है। और नखा अलावा जी को है ना, सो अगर तुम व्हाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल अन्या ताईं कोन कयो आहे त बाबा कंदा हलो, व्हाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट तव्हांजी खूबसूरती जी ज़मानत आहे, अगर तव्हां चाहियो था त तव्हांजी खूबसूरती तव्हां सां गॾु रहे, खूबसूरती जी हिफ़ाज़त भी थींदी रहे, त तव्हां व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो, मर्द मायूं सभु ही लॻाइनि पिया, सो तव्हां बि लॻायो बाबा, सुहिणा सुहिणा थींदा हलो। और नाज़िर लाहिया हमारे साथ है, नाज़िर लाहिया हमारे साथ कहां से है जी? ओके जी, लाया से आप हमारे शो सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा आदिल कहते हैं सिद्रा ये गाना, हाँ चले ये गाना आपको सुनाते हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। और लुबी हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं सिद्धू जानी क्या हाल है आपके, मैं भी आपके साथ साथ हूँ, नाइस शो। सिद्धू आज मास्टर मजदूर का गाना तो प्ले करो, आज ये किसी और की फरमाइश है, चले ठीक है मैं देखती हूँ, कोई भी लगा दूं ना, या फिर आपने गाना भी बोला है। ओके जवार अली डिनो अब्बासी हमारे साथ है, ओके जवार भाई तमाम जो मोहब्बत हुआ निडा स्टिकर शेयर करे सदा छो भला खैर ता है। दर्दे दिल कहती है कि ये लाजिम तो नहीं कि तुझे आंखों से ही देखूं, तेरी आवाज को सुनना तेरे दीदार से कम तो नहीं, यह भी गाल आए। अच्छा किशोर भाई कहते हैं टॉपिक असा सब आजमाए बैठा आयो, फेस टू फेस वाली गाल अलग आ, और रिश्तो भले केढ़ो भी हो जे। सही सही सही सही।

क्या हुआ किशोर भाई, आपको हवा हवा इतनी मतलब याद है आजकल? हवा हवा क्या हो गया है आपके? हाँ, कराची में हवाएं कुछ ज्यादा चल रही है बताएं जरा। उनके अलावा जो था वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो को ना, जो था वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल से नहीं तवा कना तो तवा भी पो हवा में उड़ना सही आ। जन की तो खैर तवा उड़ायो था पर तवा पाना भी उड़ो सही आ ना।

अच्छा जी, अलीजा भी हमारा शो सुन रही है। अलीजा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपको भी वेलकम करते हैं। साथ साथ जो है ना, आप डायल करती रहिए 03-15-799-0595। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। और जी, ये हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद जमान भाई। क्या कहते हैं टॉपिक? इतनी महंगाई है, दोनों को इग्नोर किया जाए। ये तो वैसे सोचा ही नहीं था दोस्ती का। हाँ ठीक है, बस ठीक है, मैं समझ गई बात को, गहराई को समझ गई हूँ। अच्छा, दर्द दिल क्या कहती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा है ना, कुछ लोग आते हैं दो तीन दिन बाद या दो तीन हफ्तों बाद आके कहते हैं तमाजी आवाज तो मट्टी सी भैया जाए। अगर लोग भी कहती हैं ऑनलाइन दोस्ती अच्छी नहीं है, दुख देती है ऑनलाइन दोस्ती। हाँ तो नकना कहे ऑनलाइन दोस्ती, लुबड़ी तो वैसे भी डाडी मतलब मासूम छोकरी आ है इनका अलावा जे को। अच्छा, सैयद फारूक लाड़काना आए हैं। सैयद फारूक, आपको वेलकम करते हैं लाड़काना आने पर। और ये चेतन राम ओड हमारे साथ है, उमरकोट खातमा संजो प्रोग्राम मुधुपया मोहब्बतू प्यारे भाजू।

अच्छा ये बात है, अगर मतलब जो है ना, मैं किसी के कहने पर किसी को ब्लॉक नहीं करती, हाँ उन पांजा कर तू तो कुछ उड़ाऊंदा जी वजह से ब्लॉक लिस्ट में वेंदा है। तो यह गाल अथव मता वरी कोई न गलत थे मी रहे तो बाबा मुझे चवण ते फलाने के ब्लॉक कर न या का भी अड़ी कोई भी पांजे जहन में यह गाल न वेहारे पांजा कर तू तो वठी वेंदा है हर कंहिंखे ब्लॉक लिस्ट में समझो था। हिते मुझे ख्याल में कोई भी एतिरो इम्पोर्टेंट न आहे त मां हुनजे चवण ते कंहिंखे ब्लॉक कयां समझो था। इहा ॻाल्हि पंहिंजे ज़हन में विहारे छॾियो।

अच्छा लैला मस्त बनायो आहे ने गाने जी फरमाइश मुखे कुछ दिया पेरा शायद इमरान भाई कई हुई सोमो ही गानो उनन के डेडिकेट कयो आहे उन से गुड इमरान भाई जेको आहे ना हो वाइट एसी लवली क्रीम भी लगाए पयो आई सफा लवली लवली थी वयो आहे अगर तवा भी वाइट एसी लवली क्रीम लगायो था या वरी कोई भी ओ प्रोडक्ट लगायो था वाइट एस ब्यूटी क्रीम लगायो था डॉक्टर पिंपल ट्यूब लगायो था साबुन लगायो था फेस वॉश लगायो था मुखे बुधायो नी बुधाई ना छु ना आयो भला ए पे भी कंजूसी ना वडंदो

अच्छा हिदायतुल्ला कहते हैं कि सदरा लोग ऑनलाइन भी बोलते हैं हम अच्छे हैं लेकिन वक्त के साथ उनकी असलियत सामने आ जाती, अब तुम अपने प्रोग्राम में ही देख लो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बुरो मानो ना हमेशा बुरो ही हूँ है। उनके तां केडी रिस्पेक्ट ॾियो छा बि कयो पंहिंजी, मतिलबु मूंखे लॻंदो त मां कंहिंखे इज़त ॾेई करे उनखे शायदि बहितर बनाए सघां थी, पर इहो ग़लति हूंदो आहे। तव्हां चाहे बुरो इंसान जेको न बुरो ई रहंदो आहे, चाहे तव्हां उनखे इज़त ॾियो या न ॾियो, उन सां उनखे फ़र्क़ु न आहे पवंदो। सो बसि ठीकु आहे, जैसा चल रहा है उसको वैसे ही चलने दे, और वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहे, ठीक है। और सोना रोमियो भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। जी वालेकुम अस्सलाम, आप हमें सुन रहे हैं, कहाँ से सुन रहे अल्लाह किशोर भाई पान हवा उनमें या छुबला खैर था। इकबाल लाशारी हमारे साथ मीरपुर खास से ज्वाइन कर चुके हैं जी प्रोग्राम को, बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं ना 2 बजे के बाद आप लोगों की कॉल्स की जाने पाने वाली हूँ, तो आप कॉल्स पर आइएगा और मुझे बताइएगा कि आप कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं, वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट का। और वैसे भी आप लोगों से ये चीज मैंने जानी थी, इसीलिए मैंने कुछ दिनों के बाद जो है ना वो कॉल्स लेना स्टार्ट करी, ताकि आप लोगों से मैं जान सकूं कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नहीं।

0: अच्छा बशीर लगारी गोट मीर खान लगारी वाले को मसलाम सिस्टर तवानी सफा ठीक है ता बुदा की आयो खुश आयो मजे में आयो आई दांजे गोट में मिलन था कोने ही प्रोडक्ट बुधाए तो सही और अब्दुल्ला माहिर हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम बाजी वाइट एश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त आहे मा हणा तो वाह वाह वाह वाह रिजल्ट के मिला बुधाए तो सही और मीर अला रिनो खान टालपुर हमारे साथ ही आपका शो वेरी वेरी नाइस से सलाम आपको जी वालेकुम अस्सलाम कश्यप नी ऐसा सगड़ा कश्यप चेती छा हाला सिद्रा आप कैसी हैं गुड आफ्टरनून मोला आपको सदा सलामत रखे अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे आमीन मेरी जान सेम आपके लिए भी और चाचा खाले जूनी जो मेरे साथ मौजूद हैं बिल्कुल चाचा तमन जो मैसेज पेनल ते खोड़ सारा आए ना बिल्कुल बिल्कुल मोहब्बत तमन जो ओके सो टाइम थो आए ऐसा न्यूज ब्रेक वठना ठीक है उनका पो ऐसा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठना सी उनका पो तमा दे गड मोटी ना सी ठीक है तमा काडी न मंजो इते बैठा हो जो ओ ही वनी ओ ही अचावन थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते जाइए खूबसूरत होते जाइए
1: मोरू नौशहरो मीरपुर खास लाड़काना सक्खर गूंज रही है हर जगह पर सिंध की आवाज जीए एफएम 88 नेटवर्क
2: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरनि में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलन फालेज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 AM खां शाम 6 AM ताईं परोस जुमो 12 AM ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

लाइए ना, तलाश कीजिए उसे और मार्केट में जाइए और वहां से मालूमात लीजिए. नहीं मिल रहे तो फिर डायल कीजिए 03-15-799-0595. ओके, हो गया जी. और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बता रही हैं कि दोस्ती ऑफलाइन अच्छी होती है या फिर ऑनलाइन अच्छी होती है. ज्यादातर आजकल तो देखा जाए तो बहुत से जेंजीज की बात की जाए तो वो तो ऐसा है कि उनको रियल लाइफ वाली दोस्ती तो हजम ही नहीं हो रही रियल लाइफ में, तो वो मुझे समझ लें कि ऐसा वो है ही नहीं. उनको बस सारी चीजें जो ना ऑनलाइन, वो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, दोस्तियां ऑनलाइन, रिश्तेदारियां ऑनलाइन चल रही हैं आजकल. तो मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है, कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज नहीं, ऑनलाइन दोस्तियां सही है या फिर रियल लाइफ वाली दोस्तियां सही है. ओके जी, इसी के साथ साथ हम आप लोगों के जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू जान रहे हैं, आप लोगों के मैसेजेस हैं, आप लोगों के कॉमेंट्स हैं, आप लोगों की मैं कॉल्स भी पिक करूंगी और साथ साथ आप लोगों से जानेंगे कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, दी स्किन ब्यूटी क्रीम या फिर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. ओके जी, काफी दिनों से हमने कॉल्स नहीं ली तो जो कॉलर्स बेचारे ना वो यकीनन बड़े परेशान हो चुकेंगे कि सिद्रा बाजी को क्या हो गया है, कॉलिंग क्यों नहीं ले रही. बिल्कुल जी, सो कॉल ही लेंगे जनाब और कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 03-22-1322-88. ये हमारा कॉलिंग नंबर है. आप जो हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, आप लोगों की मोहब्बतें होंगी जी हमारे लिए. और उसके साथ साथ आप कॉल कर रहे हैं, कॉलिंग नंबर है 03-22-1322-88. बिल्कुल आप लोगों की कॉल्स लेना स्टार्ट कर रही हूँ और साथ ही साथ जो है ना बिल्कुल कॉल ही आना स्टार्ट भी हो गई. तो ऐसा करते हैं कि ये जो फर्स्ट कॉल है ना ऐसे जरा पिक कर लेते हैं, देखते हैं फर्स्ट कॉलर को हमारे साथ मौजूद है. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, केरे से सगर मौजूद है. ओके जमालुद्दीन, बात साला खुश आयो. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. मुख्य बताया प्रोग्राम बुधो प्या. अच्छा मुख्य बताया केड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो थव. साबुण इस्तेमाल कयो पया. चलो जबरदस्त कीअं लॻो आहे तव्हांखे, मज़ो आयो. अच्छा मूंखे ॿुधायो, सवाल ॿुधो त टॉपिक ते तव्हां छा चवंदा. हा टॉपिक इहो आहे त जेकी दोस्ती अॼुकल्ह माण्हू ऑनलाइन रखनि था मोबाइलनि ते, उहा सही आहे या फिर जेका मतिलबु हक़ीक़त वारी दोस्ती आहे उहा भली आहे. चलो जबरदस्त, कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा, क्या गानो छानड़ो ॿुधाईंदा. जी जी गानो ॿुधायो.

0: ओके जबरदस्त जबरदस्त किरण दोस्त की याद करो प्यारो भा थैंक यू सो मच प्यारा भा प्रोग्राम में शामिल थे वीआईपी गानों बुधाइंदा आयो जनाब उन का अलावा जो तुम भी कॉल कर सो कॉलिंग नंबर है 0332132288 नेक्स्ट कॉल दिसूँ तो केयर कॉलर ऐसा सगर मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वाह
0: वाह
1: अरे उजड़ उजड़ के जो बसता रहा वो

0: बच्चियों के हाथ लिखे, सबसे पहले कई सवाल लिखे, सबसे पहले कई सवाल लिखे, पड़ गई जब नजर दरी के पर, एक महविश के खदो खाल लिखे, एक महविश के खदो खाल लिखे, दिलकशी बस तेरे बलंदी, तेरे अफसों तेरे कमाल लिखे, हर को दिए ताजगी हमने, शायरी में नए ख्याल लिखे, अरे शायरी में नए ख्याल लिखे,
1: नए नए ख्याल लिखने चाहिए,
0: सीख लिखी लिखा है सुनाता, वो नाहक लिखा है पता लिखे, नाम हमें कहीं लिखी हमने, बेघरी को कहीं भला लिखा है,
1: असर
0: पा कहता है मेरा अल्ता बलो जाग जाने जो
1: सलाम जी जी चलो चाचो गुम थी मुझे ख्याल में चाचो बस पांच
0: जी हकीकत मोहब्बत
1: इहा ग़लति आहे चलो ठीकु
0: आहे
1: चाचा तव्हांजो मोहबत आहिनि प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो ऐं हुन खां अलावा चाचे मतिलब वारो ई न ॾिनो ॻाल्हाइण जो पुछां सां मां बि ॿ ॻाल्हियूं खोड़ सारियूं ॾींहुं जेके मां पुछणु चाहियां पई पर चलो ख़ैर आहे ॿी कॉल वठंदासीं कॉलिंग नंबर आहे 0333221322 नेक्स्ट कॉल वठूं था ऐं ॾिसूं था नेक्स्ट कॉलर केर सां गॾु मौजूदु आहे हलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
1: केर सां गॾु आहे प्रोग्राम में इन जो नालो अचे थो या इस्तेमाल कया आहिनि कोन तव्हांजे ॻोठ में मिलनि था कोन न न इहो भली ॻाल्हि आहे तव्हां सही सच ॿुधाईंदा कयो ऐं मिलनि नथा तव्हांजे ॻोठ में किथां मटियारी में जी जी मटियारी में तव्हां पुछा कराइजो ॿिनि टिनि दुकाननि था पोइ नथा हलनि जेको नंबर प्रोग्राम ॿुधाईंदा आहिनि हुन नंबर ते तव्हां कॉल करे ॾिसजो कॉल कई अथव कोन रुगो सेव करे रखियो अथव अरे पोइ हिन सेव करण जो फ़ाइदो छा न पोइ मिले त ठीकु आहे न मिले त पोइ कॉल कजो ठीकु आहे चलो कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा
2: मूंसां गॾु सभु सभु जेके ॿुधनि था न पंहिंजो रेडियो हुनखे खोड़ सरा सलाम
1: जी जी
2: ऐं हिकिड़ो सॉन्ग प्ले कजे मुमताज़ मोलाई जो
1: चलो
2: ॿुधो यार पंहिंजे खे न सां परचाए सघियासीं
1: छो न परचायोसि छो न परचायोसि छो न परचायोसि
2: बसि मजबूरी हूंदी
1: चलो परचाइण जो हुनर न हूंदो ईअं चओ ओके ओके चलो कॉल इलाही लंबी थी ॿियनि कॉलनि खे वठंदासीं सो मोहबतूं प्यारे भाउ जो सोलंकी भाउ सां सगन मौजूदु नालो त विसरी वियो ख़ैर तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया वाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे तव्हां बि कॉल करे सघो था कॉलिंग नंबर आहे 0333221322 असांजो कॉलिंग नंबर आहे तव्हां ॿुधायो पिया त बाबा वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हुजनि तव्हांजे एरिया में मिलंदा कोन ऐं किथे किथे अवेलेबल कराइण घुरिजनि इहा ॻाल्हि जेका इंपॉर्टेंट हूंदी आहे तव्हांखे पुछणी सही आहे सो ये कॉल आ रही देखते कौन हमारे साथ मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम जी
1: केरस से गुड मौजूद है
2: आदि आओ कुर्बान अली खास के लिए बोला कोटा गुलाम खास के लिए झंडो मरी का
1: जी जी झंडो मरी खां प्रोग्राम बदो पे आदा खुश आयो
2: वालेकी भैया शुक्रिया रबयो
1: माशाल्लाह माशाल्लाह मुखे बुधायो त तमा जे झंडो मरी में मिलन था ई प्रोडक्ट जे बुधाया पई
2: बिल्कुलु

0: अदा तव्हांजो आवाज़ बि कटिजे थो. सिंगनलो ख़राब थी पियो आहे, सिंगनल अलाए छो ख़राब थी पियो, ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे. मूंखे इहो ॿुधायो त प्रोडक्ट जो नालो छा आहे. जी जी जी जी सही था चयो, सफ़ा सही था चयो. कहिड़नि दोस्तनि खे यादि कंदा. जी जी चले, थैंक यू सो मच. ये झंडो मरी से मेरे साथ मारे थे, झंडो मरी में मिल रहे नहीं, जरा इनकी बात मुझे समझ नहीं आई थी, नेटवर्क का इशू था. और दोबारा ये कॉल करेंगे तो उनसे जानेंगे. और इसी के साथ साथ जनाब, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं, ये आप मुझे बताते जा रहे हैं. और कॉलिंग नंबर है 0333221322N88. बिल्कुल जी, सारे आप कॉल करें लोग. और ये वाली कॉल देखते कौन मौजूद है. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, कैसे से सगर मौजूद है. हेलो
1: जी,
0: आवाज कब पे पियो तव्हां. हाय लीड़े, ये छो तो थे. नालो बुधाए जो, नालो बुधाए जो पंहिंजो. हा सही था चयो, सम्झ में कुझु नथो सही था चयो. इहा ॻाल्हि अथव, मतिलबु कंहिंजी ॻाल्हि सम्झ में न अचे न, पोइ हुनखे तव्हां चई सघो था हा सही था चयो, सही था चयो. ओके, सो ही अलाए छो नेटवर्क जो इशू थी वियो आहे शायदि, जो तव्हांजी कॉल्स अचनि थियूं त तव्हांजो आवाज़ सही नाहे ईंदो. हुन खां अलावा मां तॾहिं जेको आहे न कॉलनि खां थोरो हेॾे होॾे थी वेंदी आहियां, पर कॉल्स बि वठणु प्रोग्राम में लाज़मी हूंदियूं आहिनि. ख़ैर, वठंदासीं कॉल्स बि, काॾे वेंदासीं बाबा तव्हांखे छॾे. जेके कॉलर वीचारा असांखे ॿुधंदा आहिनि, जेके मैसेज नाइन करे सघंदा, जेके कॉमेंट नाइन करे सघंदा, सो उन खां अलावा तव्हां बि कॉल कयो जेके कॉलर आहियो, ऐं कॉल करे मूंखे ॿुधायो पिया त तव्हां किथां किथां ॿुधो पिया, किथे किथे ई प्रोडक्ट्स अवेलेबल आहिनि कोन. उन खां अलावा ही वारी कॉल वठूं था, ॾिसूं त केरु कॉलर असां सां गॾु मौजूदु आहे. हैलो, अस्सलाम वालेकुम. हैलो, हैलो, अस्सलाम वालेकुम. ये कॉलर भी लगता है, मतलब पहिरियां त थोरी थोरी चिच चिच चिच अचे पई, हाणे त उहा बि नथी अचे. ओके जी, कोई मसले की बात ही नहीं है, ये वॾनि वॾनि शहरनि में नंढियूं नंढियूं ॻाल्हियूं थींदियूं रहंदियूं आहिनि. सेनोरिटा खे सफ़ा बि घबराइण न घुरिजे. सो बिल्कुल जी, तव्हां बि कॉल करणु चाहियो था कान त तव्हां बि कॉल करे सघो था. कॉलिंग नंबर जेको असांजो आहे उहो आहे 0333221322N88. नेक्स्ट कॉल केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे.
2: अलीज़ा ॻाल्हायां पई.
0: अलीज़ा, माशाल्लाह तव्हांजो आवाज़ सही थो हुजे, छो भला ईअं छो.
2: ज़बरदस्त
0: ज़बरदस्त, ईअं कंदा कयो. ॾिस, कॉलर माना हाणे हिन मां साबित थिए थो त माण्हुनि उन्हनि वटि नेटवर्क कोन्हे को. हा बल्कि इहो मसलो आहे न, तॾहिं कॉलर्स खां थोरो वरी मां अवॉइड कंदी आहियां त कॉलियूं छा वठजनि. हाणे सॼो लिंक जेको आहे थोरो, हा तॾहिं न, मतिलब सही नेटवर्क अचे त पोइ कॉलियूं वठो.
2: लिखंदी
0: आहे अॼु, लिखे अॼु मां तव्हांखे छा. चलो मूंखे इहो ॿुधायो, चलो ठीकु आहे. मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां जेके प्रोडक्ट ॿुधायां पई प्रोग्राम में, उहो इस्तेमालु कया आहिनि, कहिड़ो वरितो अथव. अञा कोन वरिता आहिनि, छो भला. मीरपुर ख़ासि में मिलंदो कोन.
2: शहर ख़ासि वियासीं
0: जी,
2: चकर वियासीं, ॿिन्ही चकर कोन मिलिया.
0: इहा ग़लति ॻाल्हि आहे न, मिलंदा तॾहिं माण्हू वठंदा न. जी, चलो इहा शिकायत असां तव्हांजी पहुचाए छॾींदासीं, जी तव्हांजे एरिया में जल्दी अवेलेबल थी वञनि ऐं तव्हां लॻायो. चलो ज़बरदस्त, मां तव्हांजी ॻाल्हि पुछाए छॾींदमि, कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदी. सोनी अलीज़ा, चलो थैंक यू सो मच अलीज़ा, तव्हां प्रोग्राम में कॉल कई मोहबतूं सोनीअ जो. ऐं ॾिसो अलीज़ा जी कॉल केॾी भली आहे, माना हिन मां इहो साबित थिए थो त तव्हां जो नेटवर्क सही कोन्हे को. यस, तव्हां आयो उहे. मता यू ब्लेम हुते लगायो नो मनाया मैं तवा जो नेटवर्क सही ना है त उते बी करी कॉल करना कर जते नेटवर्क सही हो जे ठीक है अगर ता कॉल ते गलन चायो था त न त हाने ते टाइम थियो है त शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वटू था एंड ब्रेक हां पो वापसी जल्दी मोटी तवाडी नासी तवा कडी न वंजो इते बैठा हो जो मा ओ ही वनी ओ ही मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड री स्किन ब्यूटी शो स्पोंसर्ड बाय White Age Beauty Products and T-Skin Beauty Products. Lagate jaiye khoobsurat.

जनाब क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाना आप यहाँ पर सुन रहे हो। साथ ही साथ प्रोग्राम है जनाब व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावल से। आपकी सिद्रा आपके साथ मौजूद है प्रोग्राम में, यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है तमाम लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। इसी के साथ साथ मैंने आज प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा था कि मुझे बताइए जरा कि ऑफलाइन दोस्तियां ज्यादा बेहतर होती है या फिर ऑनलाइन दोस्तियां ज्यादा बेहतर है, आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है, ऑनलाइन दोस्ती सही है या फिर ऑफलाइन दोस्ती सही है। इसी के साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस हैं जो कि आते जा रहे हैं।

ओवी जी इसी के साथ साथ यहाँ पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, आप हमें बताते जा रहे हैं। आप लोगों की कॉल्स बिल्कुल मैं लूंगी यहाँ पर, लेकिन आप लोगों के कुछ मैसेजेस हैं तो उनको जरा हम खत्म कर लेते हैं पहले। तो पैनल की जाने बातें हैं तो आप लोगों के मैसेजेस हैं।

मोहब्बत हूँ तमाजू मैडम कहती है आज मैं भी आपका शो सुन रही हूँ, बहुत शुक्रिया। वैसे तो आप डेली सुनती हैं क्या? चले थैंक यू सो मच। हमारी प्यारी इरम हमारे साथ है और कश्यप कहती है आप ही, आपकी वॉइस एंड आपकी हंसी बहुत बेस्ट है। माशाल्लाह आप भी बहुत प्यारी हैं। आप ही अगर आपको टाइम मिले तो सॉन्ग चलाना नहीं तो चलें, ठीक है? ठीक है, मैं आपका गाना निगत नास का गाना जो ना वो मैं कल लाजमी लगा दूंगी, ठीक है? बस आप जो है ना वो वेट कीजिएगा। और कहती है अच्छा ठीक है, साइमा कहती है गाल कंजूसी जी ना है सिदरा, गाल सच जी आहे। तपो सही आ ना तवा के जको चवा मनी अरे चलो ठीक है, मजा क्या भाई वैसे सही आ। और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है मेरी प्यारी सी परी। और शोनी कहती है आपकी जान में आ गई आपके शो में, बहुत अच्छा किया मेरी जाना आपने शोनी। और राशिद अवान हमारे साथ है फ्रॉम मेहरापुर, कहते हैं कि सिद्रा मुस्कान आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह अच्छा जा रहा है, हमेशा खुश रहें। आमीन, आप ही खुश रहें और ऐसे ही हमारे साथ रहें और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहें, कर रहे हैं ना बताइए जल्दी। अच्छा लोबी कहती है ऑनलाइन दोस्त बिना बताए ही छोड़ देते हैं, इसीलिए ऑनलाइन दोस्ती से दूर रहना चाहिए, ये भी सही बात है जी। और जमशेद फारूकी हमारे साथ मौजूद है, जमशेद फारूकी भाई मुजफ्फरा गर्सी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। और ठूफ चूसल से मोलाई मुजाहिद बोजार के सिडो जी टॉपिक वो आपने कहावत तो सुनी होगी, रोटी तंदूर की अच्छी दोस्ती दूर की अच्छी। मेरे ख्याल में दोस्ती रियल लाइफ की अच्छी होती है, क्या बोलती तो माँ भी यही बोलती। और वासु भाई हमारे साथ क्या कहते हैं, अदी सिडो ऑफलाइन दोस्ती भली आहे, ऑफलाइन दोस्ती भली आए, चलो सही है। ता चौथा तो मनू था न मनू। अच्छा हिदायतुल्ला कहते हैं सिद्रा आपने नोट किया है आजकल सुबह नहीं होती बल्कि सीधा दोपहर होती है, या तवा सफा सही गाल कया, असा सुबह ना दिसंदा वाकी असा दोपहर दिसंदा। और उनका अलावा आदिल कहते इतना शेयरिंग भी कम है क्या आपके लिए? नहीं नहीं वैसे आज आपने बहुत अच्छी शेयरिंग दे दी मुझे, सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और उनका अलावा की राजस्थान। अच्छा किशोर भाई कहते अदी टॉपिक जेके ऑफलाइन के रो न थो ने वो बेचारा ऑनलाइन दोस्ती करना जेके मुंह जेड़ा स्मार्ट वाइट एज ब्यूटी क्रीम लगाइंदा आए ना ऑफलाइन में, बिल्कुल सही गाल आए बाबा, जेके सोना हुंदा है उनन जे लाए तो सबको दीवानो हुंदो आए, आई बाकी ऑफलाइन ते जेको ऑनलाइन ते डिठो वने ते लाए एड़ा केसेस भी इंदा आइन सामो, सो बचके ना रे बाबा। वाइट एज ब्यूटी क्रीम लगायो सही आ किशोर भाई जी, हां ता भी सोना थी वने ऐसे नरबाणी तमा कॉल कयो पया ते तमा गालाए बैठो ना भला, शर्म जी केड़ी गाल आ है यो, एडो शर्म काडा आंदो तो बुधायो ते सही मुके। अच्छा उनका अलावा अनवर भा से गुड मौजूद है, अनवर भा वालेकुम अस्सलाम, खुश आयो सफा मजे में आयो। और रहें जी और के राजी मीर मुमताज अली जतोई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम भा ताजू मोहब्बतू आए। रजा बिरोही हमारे साथ है, अली अकबर बिरोही भाई भी हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच, आप दोनों को भी वेलकम करते हैं। अच्छा तो हम कॉल्स की जानेब आ जाते हैं। ओके जी हजार खान जतोई भाई भी हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। अच्छा मां तो सिर्फ यही तांगे चंदन ता वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कयो पया त कंदा रहो, आई नप्या कयो त कयो बाबा कने कंदा छो त जरी ता वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल कंदा न त तांगे खबर के पदी त ही वाकी भला प्रोडक्ट आ है, सो तमा इस्तेमाल करी दिसो तमाने खूबसूरती तमा के मिली वेनी समझो ता। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी मार्केट में अवेलेबल तव, तमा वन्यो वनी वठी चो मानन का पुछा गुछा करायो किथे मिले थी नथी मिले जे तमा जले आसानी थी वने, ठीक है? एंड कॉलिंग नंबर आ है 0332123228, सो इन नंबर एरिया में अवेलेबल थी वेंदा ही सब प्रोडक्ट जेके भी तमा के प्रोग्राम में बुधाया वन था, सो हाँ ही वाली कॉल वेटूंदा दिसू ना केयर कॉलर ऐसा सगर मौजूद आए छा तुझे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, केयर भास से सगर मौजूद आए, कितना कॉल किया मोरो का कॉल किया नालो तानो समझ में ना आयो वराए बुधाए जो हफीज। ओके हफीज मोरो का कॉल किया मुके बुधाए प्रोग्राम बुधो प्यास आंजो हफीज। ओके जबरदस्त मुके इयो बुधायो जी मुके यो बुधाए मोरो में वाइट एज प्रोडक्ट मिलन था पुछा कराई दव
अच्छा अच्छा चले मुखे हाँ जी आवाज कंहिं खे समुझ में अचे त मूंखे ॿुधाए छा चयो अलाए कहिड़ो मसलो बाक़ी नेटवर्क सां ऐं नेटवर्क एॾो ख़राब थियण जी वजह सां तव्हांजी कॉल्स तव्हांजो आवाज़ मूं ताईं सही तरीक़े सां पहुचे कोन पियो सो इन वजह सां थोरो कॉल जेको आहे न असां घटि वठंदा आहियूं पर ख़ैर एनी वे मां कोशिशि कयां थी त तव्हांजी कॉल जेके आहिनि प्रोग्राम में शामिल थी सघनि ऐं कॉलिंग नंबर आहे 0333-21322-88 जिते तव्हांजे घर में सही नेटवर्क ईंदो हुजे महिरबानी करे उते बि करे तव्हां कॉल कयो जीअं असां ताईं तव्हांजो आवाज़ सही तरीक़े सां पहुचे ठीकु आहे सो नेक्स्ट कॉल हैलो अस्सलाम वालेकुम एक और कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम जी आवाज अचे तो कपे जी अचे तो अदा अदा अदो ना अलाए काडे हो अदो नूरे चुल्ला बे बंदे मखरबती Okay, so now, so calling number is 0333-21322-88. Next call. Vettum tha, disun the next caller. Kedas is agad maajood hai. Hello, assalamualaikum. Waaki lag raha hai, time zaya ho raha hai aur kuch bhi nahi hai. तो कॉल जो है ना हम थोड़ा सा इसका मसला हल करवाते हैं पता नहीं क्यों लोगों की कॉल जो है ना वो सही नहीं आ रही हमारे प्रोग्राम में और ये कॉलिंग वाला जो सिस्टम है इसको सही करने के बाद हम प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम में कॉल्स भी लेंगे ये है ना कि जब इस तरह की कॉल्स आती प्रोग्राम में तो मुझे थोड़ा मजा नहीं आता और मैं सोचती हूँ कि भाई जब लोगों की बातें प्रोग्राम में पहुंच नहीं पा रही है कॉल के जरिए तो आप ऐसा कर लिए मुझे मैसेज कर रहे हैं ठीक है कॉमेंट भी कर सकते हैं तो जल्दी से आप हमारे प्रोग्राम का ऐसा बनते जा रहे हैं अच्छा गाने मेरे पास हैं दो तीन तो जरा हम जल्दी से ना गाने आप लोगों के सुन लेते हैं ये वाला गाना है जो कि मास्टर मंजूर की आवाज में गाना होने वाला है इस गाने की फरमाइश हमें हमारी प्यारी लुबी ने कर दी थी तो लुबी ये गाना तुम्हें रेडी किया जाता है और बताएं जरा अर्जी भुट्टो में अवेलेबल थे प्रोडक्ट कौन अच्छा अर्जी भुट्टो में अगर अञा ताईं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स कोन था मिलन त तव्हां लुबना ज़रूर नंबर ते राबितो कजो जीअं तव्हांजे अर्जी भुट्टो गोठ में बि अवेलेबल थी वञनि वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स नंबर आहे 03-15-799-0595

अच्छा एसएम कहती आवाज को नहीं दो बस छड़ माँ छड़े छड़ो पे आई हमारे बस की बात ही नहीं बाबा शोनी आपके लिए पंजाबी जो गाना है ना वो मैं कल लगा दूंगी बहुत प्यारा मेरे पास एक पंजाबी गाना है तो आप तो मैं कल सुनाऊंगी ठीक है आज का जो है ना वो टाइम जरा फुल हो चुका है तो फिर कल

बोली जी दिलबर जी बोली अगर मिठड़ी हुए तो पो बाकी भी छा खपे दिलबर अगर सोनो हुए तो वरी भी अन्या छा खपे तो अगर तुम भी पानी खूबसूरती के बधाइन चाहो था तो बाबा तुम जला व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मार्केट में अवेलेबल आ है व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड तुम के खोल सारा ब्या भी प्रोडक्ट मिलन था जी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जगह तुम जी स्किन के फ्रेश बनाईंदी फेयर बनाईंदी गोरो बनाईंदी तुम जी स्किन ते जेके भी मसला मसाला वो सब दूर करे छींदी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम तुम राजे टाइम से लगा सको छो तो हिड़ी नाइट क्रीम है उनका अलावा व्हाइट एज लवली क्रीम तुम मौजूद है व्हाइट एज लवली क्रीम जो फेयरनेस क्रीम है डी जो तुम लगा सही मेकअप का अगर तुम थोड़ा छुटकारो चाहो था गर्मी जो मौसम है तो तुम व्हाइट एज लवली क्रीम लगा सको था डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है जो उन मानों लाया जिनके चेहरे से दाना काफी ज्यादा है अगर तुम एक्नी के खत्म करना चाहो था तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लाजमी लगा दिसो उन गडोगर जो है व्हाइट एज जो साबुन भी मिले तो फेस वॉश भी मिले तो ये बी चीजों भी तुम लाजमी वजो ठीक है उनका अलावा डी स्किन ब्यूटी क्रीम तुम अवेलेबल है ओके सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम है उन मानों के लिए जो मानो थोड़ो क्रीम उनका अवॉइड करना है बाबा असा क्रीम हणू असांजी स्किन ते सूट करे अलाए न करे तो जे मानो थोड़ो कंफ्यूज हुंदा है या फिर जे मानो चाहन था असा कोई सुछो वारो प्रोडक्ट इस्तेमाल करे डी स्किन ब्यूटी क्रीम बिल्कुल तमाज लाए है विटामिन ई बीट सा तैयार कई वई है माइक्रो बीट फॉर्मुलेशन है जनाब तमाजी स्किन ते सिर्फ बिन रातन में रिजल्ट देण वारो प्रोडक्ट है छा त गाल कजे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जी जदी तमा इस्तेमाल कना त तवा केकड़ो फील थिनो त बाबा वाकई असा अमीरानो प्रोडक्ट लगायो सो दा लाजमी ट्राई करे दिजो तवांगे यकीनन डाडो भलो ही प्रोडक्ट लगंदो सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम नाइट क्रीम आए तवा बेशक राजे टाइम लगायो उनसा गडोगर तवाजे ला डी स्किन फेस वॉश भी मौजूद आए डी स्किन फेस वॉश आए जे हाइलोरोनिक एसिड सीरम सा तैयार कयो वयो आए तवाजे स्किन के हाइड्रेट रखंदो ग्लोइंग रखंदो ए तवाजे स्किन हमेशा ग्लो कंदी रहंदी सो डी स्किन फेस वॉश लगायो था उनसा गड डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगायो था ई प्रोडक्ट आहे जे के तवाजे एरिया में अवेलेबल होजन लाजमी आहे जरूरी आहे अगर ना ही अवेलेबल अन्या ताई थिया तो पोई तुम डायल कयो 03 15 799 0595

आज मुझे शदीद जो है ना वो ये डायलॉग याद आ रहा है, हाय मैं तो थक गई तो बस मैं थक गई हूँ, यहाँ पर आप लोगों से इजाजत लेती वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात जेका वो मुझे सुभाणी वाली प्रोग्राम में थियण वाली है 1 बजे का 3 बजे ताईं तमाम जो असांजो साथ हूंदा जनाब हिन सोहणे प्रोग्राम में जंहिंजो नालो आहे व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड आहे बाबा तव्हां ताईं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जेके तव्हां इस्तेमालु कंदा आहियो सुहिणा थींदा आहियो अञा सुहिणा थींदा आहियो अञा वधीक सुहिणा थींदा आहियो सो इस्तेमालु कंदा हलो पंहिंजी ख़ूबसूरती खे वधायो हिन सां गॾु गॾु किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां पई को अहिड़ो लफ़्ज़ ॻाल्हाइजो जेको तव्हांखे सुठो न लॻो हुजे हुन लाइ बि माज़रत मोकिलाणी नाहे बाबू सिन सलामत सां सलामत अलाह हाफ़िज़ बाय लव यू ऑल एंड

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खिप्से की बनी है आवाज।
0: जीए FM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।

मौसमियात खाते सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकन ला हीट व्यू अलर्ट जारी कर छो। सिंध के कुछ जिलों में मौसम अज का 12 जून तक गर्म होंगी। मौसमियात खाते चवैत सकर शिकारपुर कंबर शिदादकोट जकमवाद लाड़कानो दादू नवाबशाह घोट की खैरपुर सोफोज जो पारो मामूल का 6 सेंटीग्रेड तीन हों। मुख्तलिफ इलाकन में रात के वक्त में गर्मी बरकरार रही। शहरी गर्मी में गैर जरूरी तौर से बाहर न निकरन। सिंध में जरी पानी की खोड 56 सैकड़ो तक पहुंची वही। कोटली बैराज से 56 सैकड़ो ए गुडू बैराज से 30 सैकड़ो खोड बरकरार। सखर बैराज से भी पानी की शदीद खोड। आबादगार सारेलो बेजो पोखण लाए परेशान। गुडू बैराज जो मथाओं विकरो 75,000 ए हेठाओं विकरो 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज जो मथाओं विकरो 50,000 ए हेठाओं 18,500 क्यूसिक थी वो। कोटली बैराज वट मथाओं विकरो 11,000 क्यूसिक थी वो। डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ मुकम्मल तौर से बंद कर वो। कराची के इलाके मूसा कॉलोनी में फायरिंग। नौजवान कतल एक जख्मी। जामे चौक भरसा फायरिंग में 17 साल शिराज अहमद मारजी वो एक जणो सख्त जख्मी। पुलिस मारजी वर जो मर्ड ए जख्मी अस्पताल मुंतकिल कयो। बरसा शाहानी बिरादरी के बिंदुन में झेड़ो नौजवान कतल। काछे के गोट दोस्त मोहम्मद शाहानी में मामूली गाल झेड़ दौरान फायरिंग सबब मोहम्मद रहीम उर्फ अमीर शाहानी कतल। पुलिस फौज बिन्नी तुरंत में रेती खान के मामले का झेड़ो थो। मारजी वाल नौजवान जो लाश जरूरी कार्रवाई बाद वारसन हवाले। हैदराबाद भरसा ट्रालर जो कार के टक्कर वजना फौत 3 जख्मी। मसूब रुगड़ी भरसा नेशनल हाईवे के हादसे सबब कार में सवार फतेह मोहन मरी अली मुस्तफा फौत। साजन अली मयर अली गुलाम मुर्जा कातियार जख्मी।

0: ऐं तारीख़ जे वर्कनि ऐं मज़लूम तबक़नि जे ज़मीर में ज़िंदा रहंदड़ सिंध जे अज़ीम दानिशवर कानूनदान लेखक ऐं सिंध जे मज़लूम तबक़नि जे सघारे आवाज़ रसूल बख़्श पलेजी जी अठी वर्सी अॼु मल्हाई वेंदी। रसूल बख़्श पलेजी पंहिंजे सॼी जमार हक़ इंसाफ़ जमहूरियत ऐं क़ौमी सुजाॻी लाइ अर्पे छॾी। क़ौमी अवामी तहरीक ऐं अवामी तहरीक पारां वर्सी जूं धारदार तक़रीबूं ठठे जे गोठ जुंगशाई में थींदियूं। सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि मां काफ़िला वर्सी वारे हंधि पहुचणु शुरू।
1: सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: ब्यूटी को बनाओ परफेक्ट ब्यूटी बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम के साथ, जो दे आपको खूबसूरती का हकीकी एहसास। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे और बेजानपन, अब सबको कहें अलविदा। बेस्ट लुक ब्यूटी क्रीम चेहरे की जल्द को दे नया निखार।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
5: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट। भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: हाणे हैरत अंगेज जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिलि जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलन, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
7: It's 3:15 PM.
8: This time check is brought to you by
9: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.
10: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरन ऐं सकरन जो आवाज़,
11: GFM 90.8।

0: देखिए सिलसिले 2 जनवरी से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: मेरा
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशवरे रबते के लिए 0327-99-84-760।
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: This program is brought to you by
1: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
3: बहजो शहर बहजो घर सकरंट आई सकरंट जो आवाज
4: GFM 90.8

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हा, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं फरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: जो शहर पंहिंजो घर सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
2: GFM 90.8।

शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार। क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

हाणे हैरत अंगेज़ जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलणु फालिज शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी ऐं बादी बवासीर इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाबु इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: जी एफ एम 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज़।

लहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: बिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

मौसमियात खाते सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकन ला हीट वे अलर्ट जारी कर छो। सिंध के कुछ जिले में मौसम अज का 12 जून तक गर्म होंगी। मौसमियात खाते है सखर शिकारपुर कंबर सिद्धार्थकोट जकबाद ए लाड़कानो दादू नवाबशाह घोट की खैरपुर शफरोज जो पारो मामूल का 6 सेंटीग्रेड तक हों। मुख्तलिफ इलाकन में रात के वक्त भी गर्मी बरकरार रही। शहरी गर्मी में गैर जरूरी सफर तौर पर न निकलन।

सिंध में ज़रई पानी की खोड़ 56 सैकड़ों तक पहुंची पई। कोटली बैराज से 56 सैकड़ों, कुल्लू बैराज से 30 सैकड़ों खोड़ बरकरार। सखर बैराज से पानी की शदीद खोड़ आबादकार सारेलू बेजो पोखण लाइ परेशान। गुल्लू बैराज जो मथाओं विकरो 75,000 और हेठाओं विकरो 54,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज जो मथाओं विकरो 50,000 और हेठाओं 18,500 क्यूसिक थी वो। कोटली बैराज मथाओं विकरो 11,000 क्यूसिक थी वो। डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ मुकम्मल तौर से बंद थे पो।

0: कराची जिला के मूसा कॉलोनी में फायरिंग।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: हाँ, हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज किया है होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 6 AM तक बरोज जुम्मो 12 AM तक। एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशोरे रबते 0327-99-84-763।
4: जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har niya josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट. इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का.
4: हर चप्पा हर गोशा
5: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा.
4: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज. हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर. GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.

हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है. कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं. बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए. इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क. अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी. बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का.
1: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पेंजी स्किन के दियो एक नओ ग्लो. पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम. अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग. इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट. हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान. वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए. वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप. वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड. वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
2: तंगेज़ जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो. जी हाँ, हाणे अव्हांजे पंहिंजे शहर सकरण में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधु मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, फालेज, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे. होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब. टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, पर जुमो 12 वॻे ताईं. एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरण. वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763.
3: आप सुन रहे हैं
4: DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
1: में खाया पियो तो रियासत कानून मूजिब मुंह डींदी। आजाद कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट मुहाजरन की सीटों से हुकूमती मौकफ दुरुस्त करार दे छो। सुप्रीम कोर्ट राय डी तो 12 मुहाजर सीटों आर्टिकल 22 ए तहत आयनी तहफुज रखन थी इंतजामी फैसलन से तब्दील न तो कर सकते। सीटों में तब्दीली लाए आर्टिकल 33 ए तहत आयनी तरमीम आननी पवी। मुहाजर सीटों की तारीखी बुनियाद 1960, 1964, 1970 के कानून से जुड़ियल है। सदर आजाद कश्मीर हुकूमती सलाह से आयन की आर्टिकल 46 ए तहत सदारती रेफरेंस दाखिल किया हो। हुकूमत ए पीपल्स पार्टी विच में बजट बाबत मुशावरा थियण जो इम्कान। सदर आसिफ अली जरदारी अगवाणी में पीपल्स पार्टी के वफद हुकूमती वफद से मुलाकात कंदो। उन सदर आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के गालन वाले कमेटी से मुलाकात कंदो। मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी, वडो वजीर मुराद अली शाह, शेरी रहमान ए नवीद कमर शिरकत कंदा। पाकिस्तान जो खिते में अमन लाए कोशिशों जारी। वफाकी घर वजीर मौसम नकवी की तेहरान में ईरानी पढ़ी वजीर अब्बास राखी से मुलाकात। ईरानी खबर एजेंसी मूजिब मौसम नकवी अब्बास राखी के सुप्रीम कोर्ट लाए खसूसी खत डो। मौसम नकवी गुजियल डी वजीर आजम शहबाज शरीफ ए फील्ड मार्शल जो पैगाम खड़ी तेहरान पर हो। में तेजाब हमले में जख्मी थियल लेडी डॉक्टर कराची के निजी अस्पताल मुंतकल। तेजाब हमले में जख्मी थियल लेडी डॉक्टर मानूर के जरिए कराची आंदो वो अस्पताल इंतजामिया जो चवण है तो डॉक्टर मानूर की हालत खतरे का बाहर है। सरस अखियों मुतासर हुआ। खुशकिस्मती से लेडी डॉक्टर मानूर की अखियों जो नूर महफूज है। मानूर के तेजाब हमलों कर जवाबदार अब्जाक पान जख्मी थी पे हो। मौसमियात खाते सिंध समेत मुल्क के मुख्य इलाकों में हीट व्यू अलर्ट जारी कर छो। सिर्फ कुछ जिलों में मौसम अज का 12 जून तक वधे गर्म होंगी। मौसमियात खाते चवायत सखर, शिकारपुर, कंबर, शिरादपुर, चिकमबाद, लाड़काणो, दादू, नवाशा, घोटकी, खैरपुर, नुसरफरोज जो पारो मामूल का 6 सेंटीग्रेड तक वधिक होंगे। मुख्तलिफ इलाकों में रात के वक्त में गर्मी बरकरार रहंदी। शहरी गर्मी में गैर जरूरी तौर बाहर न निकलन। सिंध में जरई पानी कोट 57% तीन पहुंची वही। कोटली बैराज से 57, सखर बैराज से 36, गुल्लू बैराज से 34 आए। पानी की खोट सबब बैराज में निकल वाहन के भी पे हिस्से का घट पानी मिलन लगो। डाउन स्ट्रीम पानी छोड़ मुकम्मल तौर से बंद किया वो। सेंट्रल जेल लाड़काणे में के अगुणे सूबाई सलाहकार इस्माइल डायरी की तबियत अब गणती जोगी हालत में अस्पताल मंतक। इस्माइल डायरी के साह की तकलीफ सबब ट्रामा सेंटर लाड़काणे के आईसीयू में दाखिल किया वो। सिंध के मुख्तलिफ शहर में पब्लिक हेल्थ खाते के कचन मुलाजमन मुतालबन की मान्यता ला एतजाज किया है। खैरपुर, शिरादकोट, कनपुर, टणो मोहम्मद खान, अशरफरोज बिन जिले शहर में मुजाहरा। मुलाजमन का चवण है तो 7 साल का इदारे में कम कर पाया अजा तक पक्ो नो वे। सरकार तरफा एलानियल पगारों भी नियो मिलन पक्ो कर सरकार तरफा एलानियल पगारों जारी कई वन। गाजी अहमद भरसा जाल मुड़स के कतल जो जरगो। इल्जाम हेठ आयल दुर से 1,96,00,000 रुपया दंड मुकर। गोड अला डितो कलियार में 1 साल कतल थियल मुर्तजा कलियार। हर जाल मुनीरा के खून जो जरगो। रांझो कलियार दुर से 1,96,00,000 रुपया दंड मुकर। जरगो जिलानी हाउस से आसिफ शाह जिलानी अलीनवाज के चांडियो की सरपंची में थो। कराची के इलाके कोरंगी काजवदी नदी बोरला बुढ़ी पिया एक जो लाश हथ बे जी गोला चार
0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: हाने हैरतन انگیز جدید مشین ذریعے پہنجو چیک اپ کرایو ائی ہومیوپیتھک طریقے علاج سا شفا حاصل کریو جی ہاں ہانے اواں جے پنجے شہر سکرن میں حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک تے مشہور و معروف خاندانی تجربے کار سینئر لیکچرر ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی پاکستان جنرل فزیشن ماہر امراض میدو جگر جی گرمائش گردے جی پتھری سوج پرانی کھنگ زکام دل جی تکلیف اد متھے جو سور اکھن جی خارش جوڑن جو سور بخار بارن جو دیر سا ہلن فالج شوگر دماغی کمزوری خارش ناسور خونی بادی بواسیر انن سبنن بیمارن جو کامیاب علاج کیو ویندو ہے ہومیوپیتھک ڈاکٹر حارث جاوید راجپوت صاحب ٹائم روزانو صبح 9 وگے کھان شام 6 وگے تائیں بروز جمعہ 12 وگے تائیں ایڈریس حاجی عنایت ہومیوپیتھک کلینک اسٹیشن روڈ سکرن ودھک مشورے رابطے کے لیے 0327-99-84-763
3: سکرن کی ہو تو آواز بھی سکرن کی ہے
4: سنتے رہو جی ایف ایم 90.8

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: माल तैयार है ट्रक खड़ा है मजदूर खड़े बस एक चीज का इंतजार है पेमेंट कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है बिजनेस करना आसान नहीं लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट जिसमें मिले फ्री चेक बुक डेबिट कार्ड बैंकर्स चेक ई स्टेटमेंट ऑनलाइन बैंकिंग अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क अलहबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अलहबीब रिश्ता भरोसे का
2: आने हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो जी हाँ हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश गुर्दे जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिलि जी तकलीफ़ अधु मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 6 AM तक बरोज जुम्मो 12 AM तक एड्रेस हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर मशोरे रबते 0327 99

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी, बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
1: सिंध के माथे का झूमर,
2: DFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज,

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है, कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए, इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूरु मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकर। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
1: हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
1: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: माल तैयार है, ट्रक खड़ा है, मजदूर खड़े हैं, बस एक चीज का इंतजार है, पेमेंट। कारोबार चलाने के लिए सिर्फ सामान नहीं, रिलायबल बैंकिंग भी चाहिए होती है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेक बुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क, अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: सकरण के हो तो आवाज भी सकरण की है।
5: सुनते रहो GFM 90.8।

0: पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खा मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोच।

0: बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछाली है तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना फिर रूह के सामने तमाशा बन गई मामा।

0: बार कहती थी कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना।
1: जब कोई मोहब्बत करने वाला जिंदगी से जाए।
2: शादी का इवेंट और स्टेज आधा तैयार, क्यों? क्योंकि वेंडर्स को चाहिए फौरी पेमेंट। इवेंट प्लानिंग हो या कोई और बिजनेस, पेमेंट रुक जाए तो काम भी रुक जाता है। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसलिए मेरे पास है बैंक अलहबीब का अलहबीब करंट अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अलहबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट फैसिलिटी, ATM और कैश डिपॉजिट मशीन की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अलहबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अलहबीब, रिश्ता भरोसे का।

हाणे हैरत अंगेज़ जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक तरीक़े इलाज सां शिफ़ा हासिल करियो। जी हाँ, हाणे अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिजिशियन, माहिर अमराज मैदो ऐं जिगर जी गर्माइश, गुर्दे जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, जुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, फालिज, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी ऐं बादी बवासीर, इन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 6 वॻे ताईं, परोस जुमो 12 वॻे ताईं। एड्रेस: हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक, स्टेशन रोड, सकरन। वधीक मशवरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

रेस्टोरेंट बिजनेस में हर सेकंड मैटर करता है। कस्टमर्स क्वालिटी के साथ डिस्काउंट्स भी चाहते हैं। बिजनेस करना आसान नहीं, लेकिन बिजनेस के लिए बैंक अकाउंट रिलायबल होना चाहिए। इसीलिए मेरे पास है बैंक अल हबीब का अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, जिसमें मिले फ्री चेकबुक, डेबिट कार्ड, बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, अल हबीब डिजिटल के जरिए इंटरनेट बैंकिंग और SMS अलर्ट्स फैसिलिटी, ATMs एंड कैश डिपॉजिट मशीन्स की इजी एक्सेसिबिलिटी, मुल्क भर में फैला हुआ ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, भरोसा भी, रफ्तार भी। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। सुबह की

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सिंध से जुड़ी हफ्ते भर की खबरें, तकरीबात का हाल, मसाइल की सूरतेहाल, सिंध के रहने वालों के ख्याल, जानिए ये सब सिंध राउंड अप में। सिंध राउंड अप हर इतवार की शब 8 बजे सिर्फ GAFM 88 रेडियो नेटवर्क पर।
1: अस्सलाम वालेकुम सामईन, तां बुधो पिया GAFM नेटवर्क सिंध राउंड अप सां गॾु, मां आहियां गुलाब खान भेण।

सिंध राउंडअप में अज अवां बुधी सघंदा। नेब मलीर में हजार एकड़ जमीन के गैर कानूनी अलाटमेंट की जांच शुरू कर छी। रेवन्यू खाते का रिकॉर्ड तलब। सिंध में मैट्रिक जा नतीजा 10 जुलाई ए इंटर जा 31 जुलाई तक जारी करने जो फैसलो। सूबाई वजीर इस्माइल राहू की सदारत हेठ तालीमी बोर्ड जो इजलास। 1 करोड़ का वधीक इनाम रखल बदनाम धाड़ेल। बेलो तेगाणी सूधो 60 ॾिहारी पुलिस वट पेश। शिकारपुर पुलिस लाइन में सिलेंडर पॉलिसी तहत 60 कचे के ॾिहारे हथियार फिटा कया। सिंध के जेलन में गुंजाइश का वधीक कैदी वाड़ियल। 14,128 के गुंजाइश अंग 26,959 पहुंची वो। अज का सजे मुल्क में सख्त गर्मी, हीट व्यू जो खतरो। मौसमियात खाते आगाह कर छो। सिंध में पानी खोट 40% थी वही। वाहन के फराहमी में 34% तई कटौती। स्पेशल रिपोर्ट में अवाम बुधी सकंदा। सालियानी बजट अवामी मुफाद। नेब कराची मलीर जिले में हजारे एकड़ सरकारी जमीन के गैरकानूनी अलाटमेंट वाले मामले की जांच शुरू कर छी है। अगूणे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली शाह, बासर शख्स एजी मजीद खालिद यूसुफ जई अमाद दीन चाचड़ समेत बेन के खिलाफ जांच शुरू कदे रेवन्यू खाते का रिकॉर्ड तलब कर वरतो है। उन हवाले से वरतल जान मुताबिक कराची के जिले मलीर के वे पैमाने से गैरकानूनी जमीन के अलाटमेंट कई वही है। रेवन्यू खाते तोड़े लैंड यूटिलाइजेशन खाते जहा कामोरा मुलविस उन्होंने खिलाफ का भी असरायती कार्रवाई वे अरसे नेब कराची पारा मलीर जिले में हजारे एकड़ सरकारी जमीन के गैरकानूनी अलाटमेंट कर जाली इंट्रीज रखने वाले मामले की जांच शुरू कर छी है। उन सिलसिले में रेवन्यू खाते के इख्तियार खत लिखो वो बुधाया वो है मलीर के तहलके मुराद मेमण में गैरकानूनी जमीन की अलाटमेंट वे मामले की जांच शुरू कई वही है। तहलके मुराद मेमण के मुख्तियारकार के खत लिखी जाना वो है तो बुधाया वे 117 इंट्रीज कंजे नालन से उन जमीन की अलाटमेंट कदें थी कड़े आफिसरन उन जमीन की अलाटमेंट कई है और वह जमीन कड़े मानून के नाले से है और उन जमीन की हाँ स्टेटस है। समूर गुर्बल रिकॉर्ड तलब किया वो है। हजारे एकड़ सरकारी जमीन की गैरकानूनी अलाटमेंट वाली लिस्ट भी रेवन्यू खाते के मोकली वही। उन मुताबिक मलीर जिले के देह रोड में 323 एकड़ अतहर अली नाले शख्स के अलाट कर उन नाले से एंट्री रखने वाले मामले जो रिकॉर्ड डिठो वो। सिंध हुकूमत मैट्रिक ए इंटरमीडिएट के नतीजन के तारीखों जो ऐलान कर छो है। यूनिवर्सिटीज तालीमी बोर्ड के सूबाई वजीर इस्माइल राहू की सदारत हेठ सभी तालीमी बोर्ड जो इजलास थो जै दौरान सिंध में मैट्रिक ए इंटरमीडिएट के सालियानी इम्तिहान जो जायजो वरतो वो। इस्माइल राहू चो तो सिंध के सभी डिवीजनों में मैट्रिक जहा नतीजा 10 जुलाई तई इंटरमीडिएट जहा नतीजा 31 जुलाई तई जारी क्या वा। नतीजा मुकर वक्त से जारी क्या वन तो शागि के वक्त सुर दाखिला में सहूलत मिले। इन चो तो तालीमी बोर्ड में शफाफियत मेरिट इम्तिहानी निज़ाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन सहकार फराहम किया वो। इजलास दौरान वजीर के दिनल ब्रीफिंग में बुधाया वो तालीमी बोर्ड 9-11 जमायत जहा नतीजा 31 अगस्त तई जारी कर छी। सिंध हुकूमत के सिलेंडर पॉलिसी तहत कचे के 102 केसन में घुर्बल 1 करोड़ रुपया इनामी याफ्ता बदनाम ॾिहारी बेलो तेगाणी समेत 60 घुर्बल ए खतरनाक ॾिहारन पुलिस लाइन शिकारपुर में हथियार फिटा कर कानून आदो पेश थिया। उन मौके से SSP शिकारपुर कलीम मलक प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे सिलेंडर कदड़ ॾिहारन के मीडिया आदो पेश किया सिलेंडर पॉलिसी बाबत तफसीली ब्रीफिंग दिनी। SSP कलीम मलक सिलेंडर कदड़ ॾिहारन में 1 करोड़ रुपया इनाम याफ्ता बिलो तेगाणी 50,50,000 रुपया इनामी याफ्ता अलीगुल तेगाणी मंजूर जाफरी अलहयार नंदवाणी 40,00,000 रुपया इनामी याफ्ता अब्दुलरहमान तेगाणी 30,00,000 रुपया इनामी याफ्ता मोहरम तेगाणी जडे तो 20,20,000 रुपया इनामी याफ्ता वहीद सबजोई मीर शर सुल्तान बिजाराणी बशीर भयो बया केतरा ही घुर्बल ॾिहारी शामिल है जिन खिलाफ कतुल अगवा फुर धाड़ा पुलिस मुकाबलन बेन संगीन नोयत के ॾोहन जहा केस दाखिल है। इन्हें चो तो सिंध हुकूमत पारा शुरू कल सिलेंडर पॉलिसी जहा मुस्बत नतीजा सामू अची रहा मुख्तलिफ केसन में घुर्बल ॾिहारन के कानून जो
आडो पेश थियण ज़िले में अमन अमान जी सूरत हाल बेहतर बनाइण जे लाइ हिकु अहम क़दम आहे। संदसि ख़िलाफ़ दाख़िल केसनि मूजिबि कानूनी कार्रवाई जारी रहंदी ऐं खेनि अदालत आडो पेश कयो वेंदो। दोहरनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी रखियूं वेंदियूं। हुन ॿुधायो त कुझु क़बीलाई तकरारनि सबबि मुख़्तलिफ़ ज़ातियुनि सां तालुक़ु रखंदड़ कुझु घुरबल ॾोहारी अञा ताईं सिलेंडर न करे सघिया आहिनि, जॾहिं त ईंदड़ फेज़ टे में वधीक ॾोहारियुनि जे हथियार फिटा कया वेंदा। सिंध जे जेलनि में गुंजाइश खां वधीक 12,700 क़ैदी वाड़ियल, 14,128 जी गुंजाइश अंगु 26,959 ते पहुतो। रिपोर्ट मूजिबि कराची जी सेंट्रल जेल में 2400 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 7,985 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। सेंट्रल जेल हैदराबाद में 1527 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 3009 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। सेंट्रल जेल लाड़काणे में 650 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 963 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। वुमेन जेल सखर में 20 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 75 औरतूं क़ैद आहिनि। डिस्ट्रिक्ट मलीर में 2200 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 5644 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल नारा हैदराबाद में 300 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, उते 547 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल शहीद बेनिंद्राबाद में 100 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 352 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। लाड़काणे डिस्ट्रिक्ट जेल में 150 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 449 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल दादूअ में 250 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, उते 417 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल बदीन में 250 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे ऐं उते 319 क़ैदी मौजूदु आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल शिकारपुर में 250 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, त उते 440 क़ैदी मौजूदु आहिनि। जंहिं ते डिस्ट्रिक्ट जेल नौशरफ़िरोज़ में 250 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, त उते 546 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। मजमूई तौर ते सिंध जे 23 जेलनि में 14,128 क़ैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 26,959 क़ैदी वाड़ियल आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेलनि में 438 औरतूं ऐं 312 ॿार क़ैदी आहिनि, जंहिं मां 68 औरतुनि ते ॾोहु साबित थी चुको आहे। हिकु औरत खे मौत जी सज़ा मिलियल आहे, जॾहिं त 368 औरतुनि जा केस अदालत में हलंदड़ आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेलनि में क़ैद 312 ॿार क़ैदियुनि मां 8 ते ॾोहु साबित थी चुको आहे, जॾहिं त 303 क़ैदियुनि जा केस अदालत में हलंदड़ आहिनि। सिंध में पाणी खोट 40% खां वधीक थी वई आहे। ईंदड़ 10 ॾींहनि में 50% खां वधण जा इम्कान यकीनी बणिजी विया आहिनि। वावडा ऐं अरसापारा डेमनि मां पाणी भरण जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। काल मुल्क जा पाणी ज़खीरा 4 मिलियन एकड़ फुट ताईं कढिया विया। सिंध जे बैराजनि मां गुडू बैराज ते पाणी जी खोट 28%, सखर बैराज ते 38% ऐं कोटड़ी बैराज वटि 57% वधी वई आहे। सखर बैराज वटां कीर्थर केनाल में 51, राइस केनाल में 39, दादू केनाल में 83, नारा केनाल में 17, खैरपुर लिफ्ट 35, रोहिड़ी केनाल 34 ऐं खैरपुर वेस्ट केनाल में 44% खोट थी वई आहे। कोटड़ी बैराज वटि पाणी आमद 11,645 क्यूसिक आहे ऐं घुर्ज 26,900 आहे। कोटड़ीअ वटां कलेरी फीडर में 52, अक्रमवाह में 58, ओल्ड फुलेलीअ में 49 ऐं न्यू फुलेलीअ में 63% खोट थी वई आहे। गुडू बैराज ते BS फीडर में 49, पट फीडर में 14 ऐं घोटकी फीडर में 12% पाणी घुर्ज खां घटि आहे। सी जी केनाल मां कट वधाए 16,500 क्यूसिक कई वई आहे ऐं HTP केनाल वसीले बि तौसा बैराज मां 11,894 क्यूसिक पाणी खयो पियो वञे। काल मंगला डेम में पाणी आमद 43,102 क्यूसिक रिकॉर्ड कई वई ऐं कट 39,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कई वई। तरबेला डेम में पाणी आमद 1,28,400 क्यूसिक ऐं हेठां वहिकिरो 1,10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। काल गुडू बैराज जो मथां वहिकिरो 75,002, सखर बैराज जो मथां वहिकिरो 50,620 ऐं कोटड़ी बैराज जो मथां वहिकिरो 11,645 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। अॼु खां सॼे मुल्क में सख़्त गर्मी हीट वेव जो ख़तरो मौसमियात खाते आगाह करे छॾियो आहे। 7 जून खां 12 जून ताईं गर्मी जी लहर जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते अलर्ट जारी कयो आहे। अलर्ट मूजिबि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकपाल, झेलम, गुजरात, सियालकोट 8 जून खां 11 जून ताईं गर्मी जी लपेट में रहंदा। नारेवाल, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, झंग, टोबा, टेकसिंग, सरगोधा, मियांवाली, खुशा, बखर में भी हीट वेव जो इम्कान आहे। अलर्ट मूजिबि लैया, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, ओकाड़ा, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर पिण मुतासिर थींदा। मौसमियात खाते मूजिब गर्मी पद मामूल खां 4 खां 6 डिग्री सेंटीग्रेड वधीक रहण जो इम्कान आहे ऐं 7 खां 12 जून ताईं गर्मी पद 44 खां 48 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो।
8-12 जून ताईं कराची में मौसम सख़्त गर्म रहण जो इम्कान आहे ऐं गर्मी पद 40-43 डिग्री सेंटीग्रेड जे विच में रहंदो। 12 जून ताईं सिंध ऐं बलोचिस्तान जे कुझु ज़िलनि में गर्मी पद 48-51 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो, जॾहिं त ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मैदानी इलाइक़नि में गर्मी पद 41-46 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं वञी सघे थो। मौसमियात खाते शहरनि खे अपील कई आहे त गर्मी तेज़ हुजण सबबि पंहिंजे ॿारनि जो ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। पेश आहे स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु जे सरज़मीन खां वठी जबलनि जे माथिरियुनि ताईं जॾहिं बि बजट जी मौसम अचे थी, तॾहिं रुगो वज़ीर जा दफ़्तर या इक़्तदार जा ऐवान ई जाॻी नथा पवनि, पर हिकु मज़दूर जी चुल्ह, हिकु उस्ताद जी उमेद, हिकु क्लार्क जो खीसो, हिकु पेंशनर जो थकल निगाह ऐं हिकु ग़रीब माउ जो रधणो बि कंहिं अणॾिठल इंतज़ार में बीह रहंदो आहे। हर साल वांगुरु हिन साल बि क़ौम जे दिलि में उहो ई सवाल धड़की रहियो आहे त छा ईंदड़ बजट आवाम ऐं मुलाज़मनि जे लाइ आसानीअ जो पैगाम आणींदी या वरी सब्र जे सलेब ते लटकाइण वारो नओं फ़रमान साबित थींदो। पाकिस्तान जी मौजूदा इक़्तिसादी हालति कंहिं अहिड़े मुसाफ़िर वांगुरु आहे जेको कर्ज़नि जे बैठक में बीठो रहियो आहे। हिकु हथ में उमेद ऐं ॿिए हथ में कर्ज़नि जी ज़ंजीर, मुल्क अञा बि आलमी कर्ज़ ॾींदड़ इदारनि जे निगरानीअ हेठि आहे। हुकूमत खे सख़्तु माली हदबंदियुनि अंदरि रहंदे बजट ठाहिणी पइजी रही आहे, जिते ख़र्च घटाइणु, टैक्स वधाइण ऐं ख़सारो क़ाबू करणु बुनियादी शर्त बनियल आहे। हाणे सवाल उहो थो उभिरे त अहिड़े माहौल में अवामी मुफ़ाद वारी बजट केतिरे हद ताईं मुमकिन आहे। मुशाहिदे मूजिब पाकिस्तान जे सियासी तारीख़ ॿुधाए थी त चूंडुनि खां परे बीठल हुकूमतूं घणो करे अहिड़ियूं बजटूं आणींदियूं आहिनि जिन में अवामी रिलीफ खां वधीक माली नज़्मो ज़ब्त खे तरजीह ॾिनी वेंदी आहे। सरकारी मुलाज़मनि बाबति सूरतहाल वधीक पेचीदा ॾिसण में अचे थी। हिकु पासे हुकूमती हल्क़नि में अहिड़ियूं तजवीज़ूं ज़ेरे गौर आहिनि जिन में 5% खां 10% ताईं एडहाक रिलीफ पघारुनि में मामूली वाध या कुझु अलाउंस में तब्दीली शामिल आहे, त ॿिए पासे अहिड़ियूं रिपोर्टूं बि आहिनि जिन मूजिबि हुकूमत पघारुनि में वाध बदिरां टैक्स में कुझु रिलीफ ॾिए मुलाज़मनि खे मुतमिन करण जो रस्तो इख़्तियार करे सघे थी। पर हिते हिकु तलख हक़ीक़त बि लिकियलु आहे, जेकॾहिं पघार सिर्फ़ 5-7% वधंदी, जॾहिं मार्केट में महांगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल, तालीम ऐं दवाउनि जा अघु वधीक तेज़ीअ सां वधंदा रहंदा, त अहिड़ी वाध मुलाज़मनि जे लाइ रिलीफ न पर अंगनि जो फरेब महसूसु थींदी। तारीख़ शायदि आहे त जॾहिं बि हुकूमतुनि वटि माली वसीलनि जी खोट थी, तॾहिं आम माण्हूअ जे खीसे ते ख़ामोश टैक्स विधो वियो। पेट्रोल महांगो थियो, ट्रांसपोर्ट महांगी थी, भाॼी, अटो, खंड, दवाऊं ऐं तालीम सभु कुझु अवाम जे वस खां परे थींदो वियो। अॼु बि उहो ख़दशो मौजूदु आहे त जेकॾहिं आलमी इदारनि जूं शर्तूं सख़्तु रहियूं त हुकूमत रिलीफ बदिरां रेवन्यू गॾु करण खे तरजीह ॾेई सघे थी। ज़माने जे तलख़ तजुर्बे मां एतिरो ज़रूरु चई सघिजे थो त पाकिस्तान जूं बजटूं घणो करे उमेद ऐं मायूसीअ जे विच वारी सरह ते जनम वठंदियूं आहिनि। मौजूदा निशानियुनि खे ॾिसंदे ईअं लॻे थो त हीअ बजट शायदि मुकमल तौरु अवामी या मुलाज़िम दोस्त न हुजे, पर हुकूमत कोशिशि कंदी त घटि में घटि एतिरो रिलीफ ज़रूरु ॾिए जो नाराज़गीअ जी बाहि वॾे तूफ़ान में तब्दील न थिए। बाक़ी हक़ीक़ी फ़ैसिलो हमेशह वांगुरु बाज़ारि, बिजलीअ जे बिल ऐं घर जो रधणो कंदो।

0: अस्सलाम वालेकुम, ये सकड़ नवाब शाह एफएम 90.8 जी लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम सेहत जो राज होम्योपैथिक सां पेश किए पे वे मां मेजबान नादर अली मक्सी मुझे आवाज़ हवाओं के लहरों वसीले जिते जिते भी पहुंची रो है उन्हें सभी बुधदड़न के मुझे तरफा मोहब्बत ए सिख भर सलाम शाल कबूल पवे। समय नवा जहा कड़ा हाल है उम्मीद तो बिल्कुल ठीक ठाक खेर खेरियत से हूँ असो खोड़ सारियों दुआओं अवं सभी सजणन के नाम जिते भी हुजो शाद आबाद हुजो खिलंदा मुस्कुराईंदा रहो अल्लाह पाक के फजल अमान में हुजो। हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक मौजे सामिन होम्योपैथिक शोबे जा एक तजुर्बेकार नामवर माहिर डॉक्टर साहब जी असा के सेहत बीमारियों के बचाव और होम्योपैथिक इलाज बाबत कीमती मालूम फराहम कंदा। अज की इन कचहरी दौरान अस रोजमर्रा की सेहत से लागापियल केतर अहम मौजुन से गाल कंदी तो जी तीन घर भातियों की सेहत बाबत बेहतर फैसला कर सको। असा सा गड आए डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब। डॉक्टर साहब सुबह जो 9 वगे का शाम 6 वगे ती हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक से मरीजन जो मुआनो कहन जुम्मे के ढी सुबह 9 वगे का मंझंद 12 वगे ती डॉक्टर साहब क्लिनिक से मौजूद होंदा। डॉक्टर साहब जो मालूमती नंबर है 0327-9984-7063। डॉक्टर साहब की क्लिनिक की एड्रेस है स्टेशन रोड सकरंड। डॉक्टर साहब असा सा लाइव स्टूडियो में मौजूद है अचो तो डॉक्टर साहब का हाल अहवाल क्यों डॉक्टर साहब का कुछ सवाल पुछूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में तमा के दिल की गहराइन से भली कार दा चाहूँ।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: डॉक्टर साहब कड़ा हाल है नवाजा प्रोग्राम में तमा के दिल की गहराइन से भली कार दा चाहूँ।
1: जी
0: डॉक्टर साहब सवाल आए कुछ।
1: जी बिल्कुल अवाजा अज भी प्रोग्राम में सवाल जरूर होंदा उन सवाल के जवाब अस जरूर दींदासूँ।
0: सर लाइव कॉल वो सब का पे
1: जी भले।
0: अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शायद लाइन डिस्कनेक्ट थी वही है अदावरन जी। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब सिग्नल जो इशू तो अचे शायद। हेलो अदा अवा जी कॉल रिसीव थी चुके है मैं गाला यो। हेलो जी सर लाइन शायद डिस्कनेक्ट थी वही सिग्नल की वजह से। डॉक्टर साहब पाँच प्रोग्राम की तरफ इंदी प्रोग्राम के अगत बधाईदी जी कुछ सवाल आन जी अवा का पुछना असाई के लिए असान सामने की अगाई के लिए जे मू बीमार उन्होंने आगाही के लिए।
1: जी बिल्कुल साईं अवां जे सवाल जो जवाब अस जरूर दींदासूँ प्रोग्राम अजोके में।
0: जी सर डॉक्टर साहब सब का पे होम्योपैथिक इलाज के बुनियादी फलसफे बाबत बुधा असा के लाइव कॉल वो तो केर असा सा गड आन। अस्सलाम वालेकुम।
2: सलाम अलैकुम सर।
0: सर वालेकुम अस्सलाम केर है किथा का
2: बाबा अंकल है बो नुसदाबाद का मखे एकरो घोड़ो आ खत्म न तो जे बाप भाई।
0: जी जी
2: तो लाडो भी वा न समझ त 6 साल खन थी आ दस।
0: ठीक है सही हम एफएम दो डॉक्टर साहब के एफएम के जरिए बताए था। जी सर
1: सही जिस्म में घोड़ो हुए अच्छा घोड़ा जिसम में तो उनको इलाज उनको इलाज अस जरूर कंदा आयो। अच्छा इनमें कुछ शूं जरूर दिसनी पवन तो जी मिसाल तौर जी असाजे घोड़न में चाहे तो सभी का पैं घोड़ो कड़े किस्म जो इनमें घोड़ा जी कान कुछ किस्म जन कैंसर जा कुछ टीबी जा कुछ शुगर जा घोड़ा अवा बेहतर रहो सुबह मुख्य क्लिनिक दिखारे वनो तो मैं तीसी कर इलाज के हवा से बुधाइस।
0: सामने लाइव कॉल की तरफ हल्दी तो केर असा गड। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलामुअलैकुम सलाम
0: साईं केरे किथा खां गल आए जी जी साईं बिल्कुल आयल डॉक्टर साहब लाइन ते मौजूद है ना गल आए डॉक्टर साहब
2: सा अजामाबाद भी खां बिरोही पियो गल आया गुलाम रसूल बिरोही
0: जी जी साईं
2: असा जो एकरो पोड़ो असा के पियो उनी के तकलीफ असा के जी
1: अच्छा
2: हाँ इन्हीं जो इलाज
1: बुधा इलाज असा बुधा सही एफ एम से असा सिर्फ यो बुधाइंदा तो एहतियात कर सको तो वह एहतियात कजो इलाज करना हुए तो तुम अची सोता एफ एम बुधो एफ एम से बुधायस तो सामिन प्रोग्राम में छा तो इलाज बुधायण असा के अलाउ को को सीनियर्स असा के झलन था तो अवं एफ एम से वेही का दवाओं वगैरह न बुधाइंद उनकी मेन वजह चाहे तो कुछ मेडिसन अड़ी हूँ जैसा साइड इफेक्ट्स आन असाजी होम्योपैथिक की दवाओं मिलन आसान को होम्योपैथिक जो चाहे तो पैं सिम्टम्स कलेक्ट कर बाद में जो मेडिसन थी वह दिनी पौती है उल सामू इंदा रूबरू थो तो ही अवी केस टेकिंग थी अवे मेडिसन सही होंगी अस उ सिलेक्ट कर दींदा तो उन दवा वी हो क्लिन अची सोता साई सैको है न सैके में ऐसो कुछ कमजोरी के करो कुछ दिल की धड़क वे थी तदें दिल की कमजोरी थे थी अदें बाकी जो है वह छाती के कर खंग जुकाम के कर सैको हाँ अवं पेशेंट से कड़े किस्म जो है ये चेकअप का ही खबर पवी
0: सर लाइव कॉल की तरफ हल्दी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
3: जी जी वालेकुम
0: साईं केर है किथा का पा गलायो गुर्दे में पथरी है
1: सही अब अल्ट्रासाउंड करायो पांजो हेलो हेलो जी सही अब अल्ट्रासाउंड करायो पांजो लगे तो कॉल डिस्कनेक्ट थी हुई
0: जी सर सिग्नल काफी है जे जको डिस्टर्ब कन पे
1: अदा अवां जे आवाज सानी जे मुजी आवाज पहुंचे पे तो सभी का वेरी या शे मुजी याद रखो अवां अल्ट्रासाउंड करायो आहे त अल्ट्रासाउंड सां गॾु मुंहिंजी क्लिनिक ते अचो पथरी असां चेकअप कंदासीं मतिलबु की अल्ट्रासाउंड ॾिसी करे पथरी जो निकिरण जा चांस हूंदा त अव्हांखे मेडिसन मिलंदी जे चांस न

0: सफ़े जी मुराद असांजी जेको मेन शइ आहे उहा इहा आहे त जेका बीमारी जिथां जंहिं वसीले सां ईंदी आहे त उनजो इलाज बि उन जॻह ते मौजूदु हूंदो आहे। त माना जेका बीमारी आहे, मिसाल तौर ते टीबी आहे, असां में जेका होम्योपैथिक में इलाजु थींदो आहे टीबीअ जो, त जेका टीबी आहे उहा जरासीम वसीले सां अव्हां जिस्म में ईंदी आहे। त असांजी होम्योपैथिक में जेका मेडिसन ठहंदी उहा इन टीबी वारे मवाद मां ई दवा ठहंदी। त इहो कुझु दवाऊं असांजी अहिड़े हिसाब सां जंहिंजे बारे में अॼु एफ एम ते ॿुधायां त सुभाणे अव्हां उहा दवाऊं ई न खायो, त इहा शइ आहे सही। बहरहाल त हर कंहिं दवा ठाहिण जो पंहिंजो तरीक़ेकार हूंदो आहे, उन तरीक़ेकार सां इहा अव्हांजी टीबी जी दवा बि ठहंदी आहे। त असांजो फ़लसफ़ो इहो ई आहे त जेका बीमारी पैदा थी सघे थी उतां ई उनजो हल बि निकिरी सघे थो।
1: डॉक्टर साहिब, लाइव कॉल जी तरफ़ हलूं था। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: साईं वालेकुम अस्सलाम, केरे किथां गा?
2: जी साईं, मां काजीवंद गा ॻाल्हायां थो, कुर्बान अली खोसो।
1: जी जी दादा, कहिड़ो सवाल पुछणु चाहींदो डॉक्टर साहिब खां?
2: साईं, दरअसल मुंहिंजी दिमाग़ी कमज़ोरी बि आहे ऐं अखियुनि में सभकोरी बि थी वई आहे।
1: अच्छा, उमिरि घणी आहे साईं तव्हांजी?
2: जी
1: उमिरि घणी आहे तव्हांजी?
2: उमिरि 35 साल आहे साईं।
1: ठीकु आहे साईं, अव्हां एफ एम ॿुधो डॉक्टर साहिबु, अव्हांखे एफ एम जे ज़रिए आगाह कनि था। जी सर।
0: साईं, शबगोरी थी वई आहे ऐं दिमाग़ी कमज़ोरी, त इन में बहितरु रहंदो अव्हां पंहिंजे दिमाग़ जी कमज़ोरीअ जो इलाजु करायो, उन सां अव्हांजी जेका आहे तबियत बहितरु थियणु शुरू थी पवंदी। इलाजु होम्योपैथिक सां अव्हांजो थी सघे थो। चयोसीं त अल्ट्रासाउंड पंहिंजो खणी क्लिनिक ते अचो, अल्ट्रासाउंड में रिपोर्ट साम्हूं ज़ाहिर थींदी आहे, पोइ ई असां को फ़ैसिलो कंदा आहियूं त अली निकिरण वारी आहे या न। पोइ उहा त बहितरु हूंदो अव्हां क्लिनिक ते ईंदा अल्ट्रासाउंड खणी, त पोइ असां अव्हांखे इहो सम्झाए सघूं था त हिन जो इलाजु थींदो त असां इन जो इलाजु कंदासीं, जे न थींदो त तव्हांखे इहो सम्झाईंदासीं त अव्हां इन जो लेज़र वसीले सां इलाजु कराए वठो। बहरहाल बाक़ी होम्योपैथिक में पथरी निकिरण जा चांस तमामु बहितरीन आहिनि, दवाऊं तमामु सुठियूं आहिनि। छो त अव्हांजो जे सवाल नातिर साहिब जो त फ़लसफ़ो, असांजो फ़लसफ़ो इहो आहे मिसल जो इलाजु मिसल सां, यानी कि अहिड़ी जहिड़ी बीमारी आहे, मिसाल तौर ते जीअं टीबी आहे या मलेरिया बुखार आहे, त मलेरिया बुखार में जेका अलामतूं पैदा थियनि, सी लॻण, जोड़नि में सूर थिए, मथे में सूर थिए, खंघि थिए, उल्टियूं थियनि, इहे सभई तकलीफ़ जेका बि आहिनि उहा असांजी कंहिं न कंहिं मेडिसन में मौजूदु हूंदियूं। त जेतिरी मेडिसन में जेका दवा अव्हांजे लाइ बहितरु हूंदी उहा इन सिम्पटम्स जे मुराद ते असां ॾिसी करे अव्हांखे उहा ई मेडिसन ॾींदासीं। मतिलबु जेका तकलीफ़ूं अव्हांखे थियनि पियूं उहा ई तकलीफ़ुनि वारी जेका दवाऊं असां वटि मौजूदु हूंदी उहा ई दवा अव्हांखे मिलंदी, त इहे सभु तकलीफ़ूं अव्हांजी ख़तमु थी पवंदियूं।
1: डॉक्टर साहिबु, लाइव कॉल जी तरफ़ हलंदासीं त केरु असां सां गॾु आहे? अस्सलामु अलैकुम।
3: अस्सलाम, छा हाल
1: आहे? सर अलहमदिल्ला, केरु किथां खां पिया ॻाल्हायो? जी दादा, अव्हांजो नालो?
3: नालो उमेर।
1: जी दादा, कहिड़ो सवाल आहे डॉक्टर साहिब जे लाइ?
3: डॉक्टर लाइ सवाल आहे, पेट में गरमाहट ॾाढी थी रहे।
1: जी
3: हलो।
1: जी जी, ॿी का तकलीफ़ आहे साईं?
3: हा, ॿी तकलीफ़ इहो काकुस करे बस राख न, पोइ ज़ोर घणो थो लॻे।
1: ठीकु आहे साईं, ठीकु आहे डॉक्टर साहिब, अव्हांखे एफ एम। जी जी,
3: अनार इहो अनारी बि थिए थी, जलन बि थिए थी, पेट में गरमाहट।
1: ठीकु आहे, ठीकु आहे साईं, ठीकु आहे डॉक्टर साहिब, अव्हांखे एफ एम ते ॿुधाइनि था। जी सर।
0: साईं, इहा सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अव्हांजे माथे जी ख़राबीअ जे करे थिए पियो, खाधो पीतो सही हज़म न पियो थिए, उन जे करे इहा सभु तकलीफ़ूं थियनि पियूं। अव्हां इलाजु कराईंदव त इनशाला इहे सभु तकलीफ़ूं अव्हांजूं ख़तमु थी पवंदियूं।
1: जी सर, डॉक्टर साहिब सवालु आहे हिकिड़ो त होम्योपैथिक ऐं एलोपैथिक इलाज में बुनियादी फ़र्क़ु छा आहे?
0: ॾिसो, होम्योपैथिक में ऐं एलोपैथिक में जेको सभिनी खां वॾे में वॾो फ़र्क़ु इहो ई आहे त असां में इंजेक्शन्स कोन्हनि के, सभिनी खां वॾे में फ़र्क़ु इहो ई आहे त असां इंजेक्शन यूज़ नथा कयूं, छो त असांखे अलाउ ई कोन्हे को इंजेक्शन लॻाइण। हुनजी वजह छा आहे त असांजी जेका होम्योपैथिक जी ईजाद आहे उहा ईजाद थी ईअं त इंजेक्शन खां पेशेंटनि खे, मरीज़नि खे बचायो वञे ऐं अहिड़ो इलाज मिलनि, अहिड़े तरीक़े जी दवाऊं मिलनि त पेशेंट जी सिहत बग़ैर इंजेक्शन जे, बग़ैर कंहिं

0: सूर ऐं तकलीफ़ जे अवां जे पेशेंट जा दर्द मर्द गुम थियनि त उन बुनियाद ते ई होम्योपैथिक जे पोयां सभई असांजा जेका डॉक्टर्स हुआ रिसर्च जे पोयां लॻी विया त उहा अॼु हुननि जेका ईजाद कई आहे उहा इहा होम्योपैथिक ईजाद कई आहे माना होम्योपैथिक जो चवणु इहो ई आहे त अहिड़ो क़िस्म जो इलाजु हुजे जंहिंमें पेशेंट खे जेका तकलीफ़ आहे उहा तकलीफ़ उनजो मर्ज़ ख़तमु थिए ईअं न थिए त पेशेंट असां वटि अचे असां उनखे रहंदो सुयूं लॻाए अञा हुनजा दर्द मर्ज़ वधायूं
1: तमामु बहितर सर छा होम्योपैथिक दवाऊं हर उमिरि जे माण्हुनि जे लाइ महफ़ूज़ आहिनि हर उमिरि जो माण्हू यूज़ करे सघे
0: होम्योपैथिक में दवाऊं हा बिल्कुलु हर उमिरि जे लाइ मर्द तोड़े औरतनि जे लाइ सभिनी जे लाइ असांजी होम्योपैथिक दवाऊं सूटेबल आहिनि हर किसी के लिए जो भी मर्द हुजन तकलीफ़ हुजन उन्हें में दवाओं इस्तेमाल कर सकन था पर शर्त छाए तो कें होम्योपैथिक डॉक्टर के रिकमेंड मुताबिक पांजी जेका डॉक्टरी है ना वो असें होम्योपैथी में कदें भी नथी हली सके को भी डॉक्टर थी वे होम्योपैथिक में तमाम मुश्किल है असा जेका डॉक्टर थी वियासीं असा पाण अञा पढ़ी अञा पढ़ूं पिया अञा होम्योपैथी के पढ़ूं पिया तो अवां सोची सको था तो अवां होम्योपैथी किथां सीखी सको था असां पाण कोशिशि कयूं पिया अञा हिन खे सिखण जी त हिन में एतिरी मतिलबु के ॼाण आहे एतिरी हिन बीमारियुनि जे इलाज जे लाइ मेडिसन्स मौजूदु आहिनि त अञा असां हिन खे रीड पिया कयूं
1: सर छा होम्योपैथिक इलाज सां पुराणी बीमारियूं बि कंट्रोल थी सघनि थियूं जेके काफ़ी अरसे खां हलंदड़ हुजनि
0: होम्योपैथिक में पुराणो मर्ज़ अच्छा होम्योपैथिक में जेका पुराणा मर्ज़ आहिनि न उन्हनि जे लाइ त सफ़ा ख़तरनाक आहे होम्योपैथिक ख़तरनाक ईअं आहे त उन में होम्योपैथिक में एक्यूट केस जेका चयो वेंदो आहे त उन जो त आम मेडिसन सां दवाउनि सां इलाजु थी थो वञे पुराणा जेका मर्द हूंदा आहिनि न पुराणनि मुराद इहो न त सिर्फ़ु शुगर हुई ॿ साल खां पंज साल खां शुगर हुई या है साई हुई पंज साल खां माजे ज़ख़म पंज साल खां गुर्दे में पथरी पंज साल ॾह साल थी विया माजे में ज़ख़म ख़तमु थो थिए या गरमाइश ख़तमु न अवां पुराणा मर्ज़ ईअं कयो त पेशंट आहे उनखे पंज साल थी विया आहिनि ॾह साल थी विया आहिनि उनखे मादे में ज़ख़म जिगर ते गरमाइश जिगर ते मथां चर्बी फिकी साई गुर्दनि ते गरमाइश मसाने ते गरमाइश खंघु ब्लड प्रेशर वधीक थी वञनि त हीअ सभु शयूं मिलाए करे तव्हां पेशंट ॾींदव न होम्योपैथिक वारनि खे त उहा ईअं ठीकु कंदा ईअं तयारु कंदा त अव्हांखे हिकिड़ी सुई बि न लॻंदी ऐं पेशंट जी तबियत आहिस्ते आहिस्ते पंहिंजे पाण ख़ुशि थियणु शुरू थी पवंदी
1: डॉक्टर साहब लाइव कॉल जी तरफ़ हलंदासीं त केरु असां सां गॾु आहिनि अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम
1: साईं एफएम जेको तव्हां वटि हले पियो उनजो आवाज़ घटि कंदा महिरबानी करे हलो पिते में पथरी आहे साईं ठीकु आहे मां एफएम ॿुधो डॉक्टर साहिबु तव्हांखे ॿुधाइनि था जी सर
0: पिते में पथरी आहे पर हुनजो इलाज खां पहिरीं मां कराईंदुसि अल्ट्रासाउंड जे पिते में सोज आहे त मां दवाऊं न कंदुसि न को मां इलाजु कंदुसि जे सोज कोन्हे को पथरी हिकिड़ी ॿ आहिनि त पोइ इलाजु थी सघे थो इहा ॻाल्हि ध्यान में रहे अवां पंहिंजो अल्ट्रासाउंड मूंखे ॾेखारे वञो उन में जेका पिते में सोज न हूंदी असां इलाजु कंदासीं जे सोज हूंदी असां मूंखे चवंदासीं ऑपरेशन कराए वठो देरि न कयो
1: सर बार बार ज़ुकाम एलर्जन लाइ होम्योपैथिक इलाजु केतिरो फ़ाइदेमंद आहे
0: बार बार ज़ुकाम जो थियणु निछू जो अचणु ऐं उन खां अलावा ज़ुकाम निछू जो अचणु खंघु थियणु त हीअ सभु शयूं होम्योपैथिक चवे थी त इहा थिए छा ला पीउ छो पई थिए उन जी पोयां वजह छा आहे मग़ज़ में गाढ़ो नक जी हॾी वधल नक में गोश्त वधल या सेंसिटिव केस आहे मतिलबु की पेशंट सेंसिटिव आहे सेंसिटिव मुराद इहो आहे त उनखे थोरी थधि लॻी थोरी थधी शइ इस्तेमालु कई या थधी हवा में हले वियो या दूह में हली वियो मिटी में थी वियो उनखे यकदमि ज़ुकाम थी वञनि त असां में हाणे ॾिसो टे चार केस थी विया अव्हांजो सुवालु हिकिड़ो ज़ुकाम पर असां में केस थी विया हाणे चार मग़ज़ में गाढ़ो आहे उनजे करे थिए वियो उनजी दवाऊं मेडिसन अलॻि आहिनि नक में हॾी वधल आहे उनजे करे थिए उनजी दवाऊं मेडिसन अलॻि आहे नक में गोड़ी आहे फुलकणो थी वियो आहे उनजे करे थिए पियो दवाऊं अलॻि थी वियूं जे मौसम जी तब्दीली खां थिए पियो हवाऊं अलॻि थी वियूं मिटी धूड़ दसी थधो पाणी चांवर लस्सी दौरे सां खाइण सां इहा तकलीफ़ थी वञे इहा दवाऊं मेडिसन अलॻि हाणे चवण जो मुरादु इहो त अव्हांखे जेका तकलीफ़ जंहिं वजह सां थिए पई अव्हांखे उन वजह खे ख़तमु करण जी दवाऊं मिलनि इहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु होम्योपैथिक में कमाल आहे बाक़ी कंहिं इलाज में इहो कमाल आहे ई कोन
1: सर अच्छा होम्योपैथिक इलाज दौरान खाधे पीते बाबत मतलब का किरी वगैरह होंदी है?
0: होम्योपैथिक में जेल अवां मेडिसिन इस्तेमाल कियो तो खास करे लीमे जो शरबत आई सुलेमानी चा इहो अवां हरगिज इस्तेमाल न था करे सको, खास करे जेडी मल दवाओं अवां इस्तेमाल कई उन बाद में। वजह छा है? वजह इहो आहे त असां जा जेडी मल मेडिसिन या मेडिसिन इस्तेमाल कंदा आहिनि उन सां गॾु इहा शयूं इस्तेमाल करनि था, उन्हनि जे जेका जिस्म में असांजी दवाऊं वियल आहिनि उन्हनि जो असरात ख़तमु थियणु शुरू थी वेंदा आहिनि। उन्हनि जे करे असां ख़ासि करे पेशेंट खे इहा शयूं त बिल्कुलु इस्तेमालु करणु न ॾींदा आहियूं, इहो न खाओ, इहे खाइण सां असांजी दवाउनि जा असरात ख़तमु थी वेंदा। ऐं सुलेमानी चांह, लीमे जो शरबत ऐं नसवार जेका माण्हू रखंदा आहिनि उन नसवार सां बि असांजी होम्योपैथिक जा असर ख़तमु थी वेंदा आहिनि। ऐं पेशेंट चवंदा आहिनि दवा खाधी फ़ाइदो न थियो आहे, फ़ाइदो त थींदो लाज़मी पर को न को ग़लती अव्हांजी ज़रूरु हूंदी। त इहा शइ ज़हन में रहे, होम्योपैथिक जी दवा में रिज़ल्ट ज़रूरु आहे पर जे रिज़ल्ट न मिलियो आहे त उन में ग़लती कोताहियूं असांजी डॉक्टरनि जी न हूंदी, हुन में ग़लती कोताहियूं अव्हांजी हूंदियूं त जंहिंमें असां बदपरहेज़ी जेका शइ इस्तेमालु न करणी असां खाधोसीं, इहा सभु शयूं आहिनि।
1: सर नौजवान में वधंदड़ थकावट ऐं कमज़ोरी जा आम सबबु कहिड़ा आहिनि?
0: टेंशन, डिप्रेशन, एंज़ाइटी, खाइण पीअण घटि, मंशियात वारी शयूं बि ज़रूरु आहिनि। ऐं उन खां अलावा निंड जो पूरो न थियणु ऐं खाधो ख़ुराक सही तरह सां इस्तेमालु न करनि, पंहिंजी डाइट ते ख़्यालु न रखनि ऐं पंहिंजी सिहत बाबति एहतियात न रखनि। ऐं उन खां अलावा जेॾीमहिल असां ॾिसूं पिया त खाधो पितो खाधल कान्हे का, मानी जो टाइम थियो मानी न पिया खाऊं ऐं चांहि पी गुज़ारो कयूं पिया, इहो बि असांजी सिहत जे लाइ नुक़सानदेह आहे। त इहा सभु शयूं आहिनि जंहिंजे करे नौजवाननि खे कमज़ोरी, सुस्ती, कम में दिलि न लॻणु ऐं ख़ासि करे चिड़, कम वधीक चई वञनि या को गुफ़्तार वॾा थी वञनि त यकदमि कावड़, जहिड़ो फसाद, लड़ायूं, झगड़ा, मथा फाड़नि, इहे सभु शयूं शुरू थी था वञनि। वजह छा आहे त नौजवान जेको हो उन में ज़हनी तवाज़ुन सही कोन्हे को, त उन जे करे जेको साम्हूं वारो जेको चए पियो उनखे छा चवणो आहे उहो न शुरू थी था वञनि, त ख़ासि करे इहा शयूं आहिनि सही।
1: जी सर, सर ख़ुदि इलाज जेको आहे सेल्फ मेडिकेशन, उन जा के नुक़सान आहिनि अगरि जा आहिनि त उहे कहिड़ा आहिनि? पर लाइव कॉल वठूं उन खां पहिरियां। अस्सलाम वालेकुम। सर क्लिनिक जी एड्रेस आहे स्टेशन रोड सकरण, स्टेशन ते स्टेशन वारो रोड आहे साईं जेको?
3: जी जी
1: जी, इते ई डॉक्टर साहब जी क्लिनिक आहे।
3: डॉक्टर साहब जो नालो?
1: डॉक्टर साहब जो नालो आहे डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत।
3: जी जी सर जी
1: जी, अवां नंबर नोट करे वठो, जेॾी महिल बि तव्हां इलाज जे लाइ अचो तव्हां नंबर ते कॉल करे डॉक्टर साहब खां पहिरियां मालूमात वठो।
3: अच्छा, डॉक्टर जो नंबर ॿियो आहे
1: सर? न, जंहिं ते तव्हां कॉल कई आहे इहो ई नंबर आहे डॉक्टर साहब जो।
3: सही सही, ठीकु आहे, अलाह ख़ुशि रखे।
1: ठीकु आहे साईं जी। सर
0: अव्हांजो सवाल हो सेल्फ मेडिकेशन जे हवाले
1: सां? जी जी, सेल्फ मेडिकेशन।
0: अच्छा, सेल्फ मेडिकेशन में होम्योपैथिक में त सेल्फ मेडिकेशन आहे ई कोन, उनजी वजह छा आहे त जे असां पंहिंजी कोशिशि करे पंहिंजी डॉक्टरी करे दवाऊं बि वठंदासीं टके जो फ़ाइदो कोन थींदो, छो त इन में केस टेकिंग सां गॾु जेसि ताईं केस टेकिंग क्लियर नथी थिए, होम्योपैथिक जेका राइट दवा आहे, जेका राइट मेडिसन आहे, जेको अव्हांखे ज़रूरत आहे चैट जीपीटी थ्रू बि अव्हां वठी सघो था, पर उहा दवा अव्हांखे न लॻंदी, छो त सिर्फ़ु अव्हांखे दवा न खपे उन सां गॾु कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसन ज़रूरु खपे, एंटी म्याज़ोमेटिक मेडिसन अव्हांखे ज़रूरु खपनि, ऐं उन खां अलावा एंटीडोट्स अव्हांखे ज़रूरु खपनि, जंहिंजे खां बाद में ई अव्हांखे राइट मेडिसन जेका आहे अव्हांजी बीमारी आहे उन जेका दवा आहे पोइ ई असर करे थी। त इन करे मुंहिंजी जेका प्रैक्टिस आहे उन में अव्हां यादि कया हूंदा पेशेंट जेका मूं दवा वठी आया आहिनि त हद अधु अधु अधु कलाक खां पोइ दवा हूंदी आहे, सुबुह जो निराणे वारी दवा अलॻि हूंदी आहे, बीमारी जी दवाऊं अलॻि हूंदियूं आहिनि। हीअ शयूं आहिनि, बाक़ी एलोपैथिक में साइड इफ़ेक्ट्स तमामु घणा आहिनि हर दवाऊं जा, त उन में मां ज़रूरु सभिनी खे चवंदुसि त एहतियात ज़रूरु कयो, इलाज पंहिंजो कयो पिया, पंहिंजी जान लाइ कयो पिया, बहितरु रहंदो कंहिं डॉक्टर खां चेकअप कराए उन खां जेका मेडिसन उहा लिखे उहा अव्हां इस्तेमालु कयो, नथा करियो नथा वठो। सिर्फ़ु होम्योपैथिक करण था चाहियो त होम्योपैथिक जी दवाउनि सां अव्हां इस्तेमालु करे सघो था, होम्योपैथिक दवा अव्हां जे इस्तेमाल में का बि क़िस्म जो नुक़सानु होम्योपैथिक दवा सां नथो थी सघे।
1: सर मरीज़ खे आमतौर ते केतिरो वक़्तु लॻंदो आहे होम्योपैथिक इलाजु ज़ाहिरु थियण में?
0: पेशेंट के महसूस कदे थिंदो त मुंजी मां दवा खाए पर मुके फायदो थे
1: राइट जी जी
0: पेशेंट के महसूस थिंदो जेडी मल असा जी एक नंबर गोरी खाए उने के बस कंदो बे नंबर वाली गोरी शुरू कंदो उने का अग में खबर पंदी त हा बा अंदर जिस्म में का नकाशे थे पई का तकलीफ थे पई कान का महसूस थे पे तो कुछ मुख्य दवाओं जो मुख्य खड़न पे अध कलाक अध कलाक टेबलेट्स होंद टेबलेट जन्हें में ही पेशेंट पाँ पा महसूस कह हाँ मुझे जिसम में तब्दीलू थन पे बीमारियों कुछ घट थन पे मुख्य महसूस थे पे तो मन वो एतरी देर लगंदी है जेतरी देर में अव चू जो टेबलेट्स अस दींदा हूँ खाने के लिए पे पेशेंट के चूसण के लिए डींदी अद अद कलाक बाद में तो जी पे गोरी चूसे बस कह उनके पा महसूस तो होम्योपैथिक दवा जो गेम शुरू थी वही तो हाँ मुख्य एहतियात करनी है टाइम से बी गोरी खानी है टाइम से बी गोरी खानी है तो जैसा मुझे जिसम में जो तकलीफूँ वह ये जादू वागर गुम थी वन सामिन प्रोग्राम सेहत जो राज होम्योपैथिक छाण कर खिदमत हाजिर अवजो डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत क्लिनिक हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकरन स्टेशन रोड से अचण मल अवां याद रखा पार्क वाली घिटी टेंकी वाली घिटी वाटर सप्लाई वाली घिटी सब नाला हिकड़ा घिटी वट पहुंची कॉल कंदा पाने अस वट पहुंची वो समझण के लिए अवां के निम जो वण लगो पे होंद रोड जे मथा पहुंची वह समझो अस वट पहुंची वो तो यो है असांजी क्लिनिक बाकी तकरीबन जेका पुराना असांजा पेशेंट आन जेका असां गए दादा का दवा वठंदा आन तो उन्हनि जे लाइ त उन्हनि खे सिर्फ़ु एतिरो अल्फ़ा चयो अव पुराणी जेका क्लिनिक हुई न हाजी इनायत वरी होॾां वञो पाण सिधो खणी ईंदा हुआ ही सही क्लिनिक पुराणी हिते हूंदो हाजी इनायत पहिरीं त उहो उन्हनि खे त ख़बर आहे ऐं जेका मां बि हुते प्रैक्टिस कंदो हुउसि पेशेंट मूं वटि पोइ हूंदा हुआ की चारि साल अॻु में मां पहिरीं होॾां ई प्रैक्टिस कंदो हुउसि त पोइ वरी हेॾां शिफ्ट थी वियासीं चारि साल हेॾां हुआसीं चारि साल खां पोइ वरी वापसि पंहिंजी जॻह ते वापसि आयासीं त सभिनि खे ख़बर आहे असांजी असल क्लिनिक पुराणी क्लिनिक कहिड़ी आहे उहा स्टेशन रोड जे मथां आहे ऐं साॻी उन क्लिनिक में मौजूदु आहियां सुबुह नवे खां वठी शाम जो छह वॻे ताईं मुंहिंजी हुते प्रैक्टिस आहे वधीक अवां फ़ोन ते राब्तो रखी सघो था अचण महिल का देरि सवेर थिए थी त अवां परेशान न थियो अॼु बि पेशेंट हुआ उन्हनि असांखे कॉल करे चयईं साईं असां दलेल देरो पहुची विया आहियूं पर गाॾी पंचर थी वियो अचण में ॿ टे मिंट लॻी वेंदा असां इंतज़ारु कयोसीं तक़रीबन सवा छह बजे ताईं हू मूं वटि पहुता मेडिसन ॾिनी दवा ॾिनीसीं पोइ वरी वापसी असां पंहिंजे घर ते वियासीं एतिरो पंधु करे आया आहिनि छह थी वञनि रस्ते में का मसलो थी वञे डॉक्टर खां बि न मिलूं दवा बि न मिलूं एतिरो टाइम छुड़ाए पेट्रोल ख़र्च करे अचूं त इन करे असां 15 मिंट 10 मिंट 20 मिंट ख़ैर आहे इंतज़ारु कयोसीं त हू एतिरो मंज़िल करे आयो आहे त हुनखे दवा त मिले नुक़सान इहा त नसीब जा ख़्याल हूंदा आहिनि को ख़ैरियत सां पुॼंदा आहिनि त को टायर पंचर थी था वञनि त इहो ख़ैरु आहे परेशान न थींदो ओॾी महिल मूंखे कॉल करे ज़रूरु ॿुधाईंदा मां अव्हांजो इंतज़ारु ज़रूरु कंदुसि
1: जी सर तमामु बहितरीन सर बीमारियुनि जो तालुक़ु सिर्फ़ु जिस्म सां आहे या सोचनि सां असरु पवंदो आहे इंसान जे इंसान ते
0: अच्छा बीमारी जो तालुक़ु आहे त जिस्म सां आहे या सोचनि सां आहे जिस्म सां आहे या सोचनि सां
1: जी जी सर अक्सर इंसान बीमार छाजे करे थींदो आहे पंहिंजे बदपरहेज़ी जे करे या पंहिंजी सोच जे करे
0: न त ॾिसो इन में अवां हिकिड़े सवाल खे मिक्स कयो पिया
1: हिन
0: में अवां पाण ई चयो पिया सवाल जो जवाबु
1: जी सर
0: बदपरहेज़ी हा भा बदपरहेज़ी सां माण्हू बीमार थींदा आहिनि
1: जी सर बीमारियूं पैदा उन करे थींदियूं आहिनि
0: बदपरहेज़ी सां थींदियूं
1: आहिनि
0: सोच गणती परेशानी सां बि थींदियूं आहिनि ऐं हिन खां अलावा जेॾीमहिल बीमारी पैदा थींदी त जिस्म ज़रूरु ऑटोमेटिक डिस्टर्ब थिए थो जिस्म में डिस्टर्ब थियण जी माना कमज़ोर थियण जी वजूहात छा आहे त जेका सिस्टम हलनि पिया साह वारो सिस्टम दिलि वारो सिस्टम खाधे पीते वारो सिस्टम पेशाब वारो सिस्टम हीअ सिस्टम असांजे जिस्म में हलनि पिया दिमाग़ जा नर्व जो सिस्टम हले पियो त उहा डैमेज थींदा आहिनि रुकावट हुननि में थींदी आहे जेॾीमहिल असां बीमार थींदा आहियूं पोइ उहा उन बीमारी में उन्हनि जी रुकावट सां उन्हनि जे कमु किरदार में कमीअ सां ई असांजे जिस्म ते असरात थींदा आहिनि पोइ असांजो जिस्म बीमार थियणु शुरू थी पवंदो आहे अवां जे सवाल जो तक़रीबन इहे मुंहिंजे हिसाब सां बहितरीन जवाबु आहे
1: जी सर बिल्कुलु इहो ई जवाबु आहे सामिन लाइव कॉल जी तरफ़ हलंदा केरु असां सां गॾु आहे अस्सलाम वालेकुम
4: डॉक्टर साहिबु था ॻाल्हायूं
1: जी जी साईं डॉक्टर साहिबु लाइन ते
4: ॻाल्हायो
3: डॉक्टर साहब हिकड़ी गोरी ॾिनी हुई जेकी दवा वठी आहे हिकिड़ी मानी सां आहे हिकिड़ी मानी सुबुह नेराणी पए जा
0: हा साईं हिकिड़ी सुबुह जो नेराणी हूंदी बाक़ी हिकिड़ी टेबलेट आहे चूसण वारी ॿ गोरियूं हूंदियूं अच्छी थैलियों में आहिनि त उहा मानी खां बाद में ॾींहं में टे दफ़ा पाणी सां खाइणियूं आहिनि कागर में वेड़ियूं आहिनि उहा बि पाणी सां पर हिकिड़ी सुबुह हिकिड़ी शाम
3: अच्छा
0: जी मानी खां अॻ में हिकिड़ी हूंदी मानी खां बाद में ॾींहं में टे दफ़ा हा बाबा उहा टे दफ़ा ॾींहं में उहा हिकिड़ी दफ़ा ॾींहं में जी हा उहे तरीक़े सां इहो ई पेशंट हो जंहिंजो हींअर एफएम ते ॿुधायो न त लेट थी आहे पंचर थी आहे इहो साॻियो पेशंट आहे
1: सर तव्हांजे ख़्याल में अॼुकल्ह माण्हू इलाज खां वधीक बीमारियुनि जो शिकार छो थी रहिया आहिनि
0: मुंहिंजे हिसाब में पेशंट वधीक थियनि पिया ऐं सेतिया माण्हू घटि थियनि
1: पिया
0: खाधो ख़ुराक माशाल्लाह असांजो अहिड़ो सुठो आहे जंहिंजी को हदि कोन्हे को जीअं असां बादशाहनि वारो मानी खाऊं पिया बादशाहनि वारो खाधो खाऊं पिया न ॿाहिरां का शइ वरिती न धोती न छा बसि ईअं खाए वञूं था ऐं जेका शइ असांजी सिहत जे लाइ नुक़सानु आहे असां दॿे था खायूं ऐं जेका असांजे लाइ फ़ाइदे वारी शइ जेको घर में खीरु पियो आहे काढ़े असां पियूं असांजा हॾा मज़बूत थियनि ऐं माध्य जो निज़ाम तेज़ थिए सफ़ाई थिए पेट जी न वठी पाणी मिलाए खपाए छॾंदा आहियूं त इहे सभु पंहिंजी ग़लतियूं आहिनि न जंहिंजे करे असां बीमारी पाण वठूं पिया वधीक मां चवंदुसि त माण्हू कावड़ थी वेंदा
1: न सर एतिरो काफ़ी आहे अच्छा सर ही कुझु सवाल आहिनि जेके अञा रहनि था प्रोग्राम जे आख़िर ताईं पाण खे हलणो आहे
0: मां नए वॻे ताईं पुथल आहियां
1: जी जी बिल्कुलु सर ॿारनि जे हवाले सां ॿारनि जी बीमारियुनि में संदन रवानी रूटीन बि हूंदी आहे रोज़ानी रूटीन जीअं ॿार खीरु वग़ैरह पिए थो छा हिननि शयुनि मां बीमारी पैदा थींदी आहे सर
0: ॿार खीरु पीअनि था डेलीअ उन सां तकलीफ़ जो थियणु ॿारनि में
1: जी जी
0: अच्छा नंढे ॿारनि में या लेडीज़ में
1: न सर ॿार नंढड़ा ॿार
0: मासूम तकलीफ़ जेको सभिनी खां पहिरीं हिकिड़ी शइ यादि रखो त जेॾी महिल ॿार पैदा थिए थो छह महीने ताणी असांखे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु माउ जो खीरु ॾियणो आहे माउ जे खीर जी कमी अॼुकल्ह औरतुनि में ज़रूरु आहे उन में वजह छा आहे कैल्शियम जी कमीअ सां खीर घटि वधि थी थो वञे लेडीसनि में उहा अलॻि केस आहे पर जेॾी महिल घटि वधि थी थो वञे त माण्हू छा कंदा आहिनि मथां खीरु पीआरींदा जीअं माल जो खीर काढ़े उहो पीआरींदा उन्हनि जे करे ॿारनि खे उल्टी पेट में सूर थी सघे थो उन में छा कबो खीर खे काढ़े अधु खीरु अधु पाणी करे पोइ अव्हांखे ॾियणो आहे पोइ बि ॾींहं में हिकिड़ो दफ़ा ॾेई पोइ ॾिसो पेशंट ॿार खे को तकलीफ़ त नथी थिए पेट वॾो त कोन थो थिए दस्त कब्ज़ी उल्टी या को ख़ारिश वग़ैरह त कोन थी थिए त इहा नथी थिए अव्हां खीरु उहा इस्तेमालु करे सघो था न त पोइ अव्हांखे डॉक्टर वटि वेंदव उनखे इन्हनि सभई कंडीशन जे हालात जे बारे में ॿुधाईंदव त उहा ई वज़न करे प्यार जो ऐं उन मुताबिक़ अव्हांखे ॿुधाईंदो उमिरि ॾिसी वज़न ॾिसी अव्हांखे को खीर जो डॿो लिखी ॾींदो ऐं उन में केतिरा दवा केतिरो पाउडर मिलाइणु केतिरो पाणी मिलाइणो आहे केतिरो फीडर ठाहिणो आहे त उहा सभु शइ अव्हांखे सम्झाईंदो जंहिंसां अव्हांखे उहा शइ हलाइणी आहे छह महीननि खां बाद में अव्हां उनजी खुराक वधाईंदव त जंहिंसां उनजी सिहत सुठी थिए त इहा सभु शयूं आहिनि जंहिंखे अव्हांखे ख़ासि ख़्यालु रखिणो आहे त इहा शयुनि ते ख़्यालु रखंदव त ॿार बीमार न थींदा
1: अञा सर कुझु अहिड़ा मरीज़ हूंदा आहिनि जेके बीमारी खां वधीक ख़ौफ़ जो शिकार थींदा आहिनि
0: होम्योपैथिक में हिननि जो अहिड़ो क़िस्म जो इलाजु आहे तव्हां तुंहिंजी सोच न आहे मां इहो चैप्टर पढ़ियो
1: इहा
0: चैप्टर मां पढ़ी इहो चैप्टर मां पढ़ी परेशान थी वियोसि यार इहो छा आहे होम्योपैथिक पेशंट हुन में असांजी जेका किताब हूंदी हुई हुन में सॼो लिखियो पियो हो त पेशंट खे जोड़नि में सूरु पेशाब में जलन माथे ते गरमाइश ऐं ब्लड प्रेशर जो वधीक थी वञनि ऐं जिगर जे मथां चर्बी खंघि ऐं राति जो निंड कोन्हे को जिस्म बेचैन फरती ऐं कंडीशन अहिड़ी आहे त केॾी महिल ख़ुशि केॾी महिल रोए पियो मानी खाधी न खाधी तक़रीबन इहे बीमारियूं हुन में लिखी वियूं आख़िर में हिकिड़ी शइ लिखियलु हुई त पेशंट मूंखे चए पियो पेशंट डॉक्टर वेठो आहे त हुनखे चए पियो मां सुभाणे 9 बजे गुज़ारे वेंदुसि मूंखे दवा न ॾे मां सुबुह 9 बजे गुज़ारे वेंदुसि असांजी होम्योपैथिक छा थी चए इन पेशंट खे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु इकोनाइट 1 mg जो हिकिड़ो डोज़ ॾेई छॾियो ऐं हिनखे चओ 9 बजे ॾिस तूं गुज़ारे थो वञी या न सिर्फ़ु हिकिड़ी दवा ॾियणी आहे इहा उन पेशेंट जहा सभी मर्द दर्द तकलीफों ही सब शूं गुम खत्म माना पेशेंट बुधाए होम्योपैथिक दवा ये एतरी माना असि रिसर्च छो तो इंसान पान रिसर्च कई है तो एतरी शूं कढ़ी हुई उन दवाओं से तो अस पान पढ़ी पढ़ हैरान थी तो पेशेंट सभी बीमारी दवाओं तकलीफों जो हुई असं सब छे दिनों सिर्फ एक गाल के असा वी कर इलाज शुरू कर पेशेंट सुबह नए बजे गुजारे वेंदुस मुख्य दवा न दे माना पाँच मरण जो टाइम बुधाण तो सिर्फ ऐसे एक दवा एकोनाइडेन बाबा तू हाँ मरी दिखार दम आ तो मर दिखार माना एतरी अस कदर होम्योपैथिक में इलाज है उन अलावा बी दवा ये बुधा त पेशेंट तो चे तो मैं पान के गोली हणदस यहड़ी शे है असि किताबन में लिखल तो उनके सिर्फ दिनी ओरोमेट खुदकुशी ओरोमेट दींदा उनकी खबर ही न पवी हि मट कर घर में वही सुधो पे होंगे यह सब शूं दिमाग में खत्म मन एतरे कदर होम्योपैथिक इलाज में अगत निकरी हुई है तो अस सिर्फ ये सोचू पाया एफ एम से डॉक्टर वेठो है ये पाँच गाल मरीजन के घुराए पे उन दवाओं पे दे बस इं सोच है पर होम्योपैथिक इन का अगत निकतल अवं सोचन का बाहर है होम्योपैथिक अवं सिर्फ यो न सोचो तो मां सिर्फ एफ एम से वेही अवं के सवाल जवाब दे अवं के घुराए दवा दी बस यो कम क्यों कुझा जहाँ पेशेंट दवा वन पे दवा खान पे वह बेवार अचन पे तो पा सा गो को पेशेंट खड़ी पे अचन उनकी वजह चाहे दवा सही मिली इलाज सही मिलो दवा टाइम से खाधी पेशेंट के फायद थो बो जो अचे पो उन भी फायद थे पो वजह चाहे तो उनके खपे अड़ी दवाओं जैसा नुकसान न थे बीमारी खत्म थे तो उन सभी मूं अची परे परे का पंद कर अचन पे असा भी फर्ज है अस पूरी कोशिश क्यों पा दवा की उन्होंने जरूरत है अस को घुराए भी रखा था तो पे उनके पेशेंट अचे तो मैं उनके दें या लिखी दई छा या तो वनो क्या रस्ते में नवाब शाह मिलो नवाब शाह का यह शे वी जरूर वनो मुझे ये व्हाट्सएप मुख्य उन व्हाट्सएप से दिखारे छो तो मैं ऐसे वहाँ तो दवा सागी है या न पेशेंट के दवा असो कम है तो जी तकलीफ है उनकी दवा मिले वह टाइम से खाए बाकी कम किरदार उनके शिफा देण न देण उनके अजा हलण बीमारियों में वह रब की मर्जी है असानी कान को मरीज की मरीज जो फर्ज कोशिश करन असो फर्ज कोशिश करन शिफा देण अल्लाह की मर्जी है कड़ी खबर वह नियत कर अस अचे क्लिन से पोची दवा वे घर वही खाए भी न अल्लाह उ शिफा दे छे पर शायद नियत हुजेस न नियत के सज दारो मदार है नियत सा नियत साफ होंगी इंशाल्लाह हर मंजिल आसान होंगी
1: जी सर तमाम बेहतरीन सर खानदानी बीमारी के बारे में चवण है
0: खानदानी बीमारियों जेनेटिक्स प्रॉब्लम
1: जी जी उन जो को हल को वसीलो उन जो अच्छा दादे में हुई वो पुत्र में आई वरी उन जे पुत्र में वरी उन जे पुत्र में
0: अच्छा मैं एकड़ी गाल लाइव अफेम तो चाहा छ
1: इने
0: शे जो होम्योपैथिक में इलाज आ है होम्योपैथिक में इने शे के आम ना है सड जंदान त या आम कने का या खास शे है पर एकड़ी शे ध्यान में रहे इने बीमारी जो मुके पेशेंट जो इलाज न कयो तो इन बाबत मां वट के भी पेशेंट न था अचन न को मां इन बाबत पेशेंट के घुराइंदुस तो इन जो मु कें पेशेंट ते दवाओं दिनियो कोन तो मां इन शे जो इलाज न कंदुस हाँ होम्योपैथिक में इन शे जो इलाज है बीमारियों अगते नसल में न वेंदियूं उनके रोकथाम के ला मेडिसन्स दवाओं मौजूद हैं पर मुझी क्लिन ते ना है इन करे मां वहां के साफ अल्फाज में चाहा पो यो केस मोट हल न थी सकंदो छो तो मु कदे यो केस हल के ही कोन बाकी बया जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं वा जो असा प्रोफेसर उन्होंने वेंदा तो यो केस अवजो हल थी जो बीमारी वडन का हली अवा पोची वही है अवा का अगते नसल दानी न वी
1: जी सर सर सेहतमंद इंसान है उनके तकरीबन घने अर्से का सेहत जो चेकअप कराने घुर्जे तो जी उनकी खबर पे तो ठीक आया या मुझे अंदर का बीमारी पैदा थी चुकी है
0: उन में सभी का पे वह पान पाँ जिसम के नोट करे यानी कि अड़ो टाइम एक टाइम पाँ जिसम के रखे जैमें को भी खास कर मोबाइल माना का भी अड़ी शे वेझे न हो सफा सुकून आराम रिलैक्स थी एक कमरे में माना को दरी में ठुड़को भी न थे अड़े तकरीबन माहौल ठाए सुकून से वेही अखियों बंद कर वेही सजो पाँ जिसम के ये सोचींद वो सोच मुझे पेशाब सही अचे पो डी में एक दफ़ा काकू सही है खंग कान्ने का हलां पो सेक ना है पेट भरती केस कब्जी हाँ में साड़ो जलन कुछ भी को चेल में सूर को कम कार कयां पियो सही आहे, चाड़ियूं चढ़ा वड़ा लहां पियो सही आहे, मथे खे चकर वग़ैरह कोन्हनि, खे वार बि न पिया किरनि, मथे जा वार माशाला वॾा थियनि पिया। त इहे सभु शयूं जेॾी महिल उहा वेही सुकून सां सोचींदो न, हुनखे पाण ख़बर पवंदी त हाणे मुंहिंजो जिस्म सिहतमंद आहे, मुंहिंजो जिस्म ठीकु आहे, मुंहिंजो तकलीफ़ का बि कान्हे का, त बिल्कुलु ठीकु आहे। जेॾी महिल उनखे महसूसु थींदो आहे इन शइ में कमी आहे, त ओॾी महिल वञी कंहिं डॉक्टर सां रुजू करे पंहिंजो इलाज कराए। बाक़ी आहे त असां चवंदा आहियूं छह महीना जेका आहिनि, छह महीननि में अवां पंहिंजो चेकअप ज़रूरु कराए अचो। त छह महीने हिकिड़ो टाइम पीरियड हूंदो आहे, उन में माण्हू खाधो पीतो कोन का शइ अहिड़ी थी पवंदी आहे जंहिंमें कोन का बीमारी स्टार्ट थी पवंदी आहे, शुरू थी पवंदी आहे जिस्म में ठहण, त उनजी रोकथाम थी सघे थी ऐं इलाज कराए। बाक़ी जेको जंहिंखे हेपाटाइटिस सी बी थी चुको आहे, उहो पंहिंजो इलाज कराए चुका आहिनि, मेडिसन वग़ैरह खाए उनजी टेस्ट खां पोइ नेगेटिव अची वई आहे, पर बि उहा मुंहिंजी ॻाल्हि ज़हन में रहनि त हर 5 साल खां पोइ उनखे PCR हरू भरू करणी आहे। सिहतमंद हुजनि न हुजनि, खड़ी बुखार ई छो न हुजे, 5 साल पूरा थी विया पहिरीं PCR जे लाइ पैसा भरे PCR जी टेस्ट कराइनि, भले हुन में नेगेटिव अची वञे त बि तव्हांखे वरी 5 साल वेट करे वरी 5 साल खां पोइ वरी कराइणी आहे, वरी उन में बि नेगेटिव अची वञे वरी 5 साल खां पोइ वरी अव्हांखे PCR वरी करणी आहे। माना हर 5 साल में अव्हांखे PCR करणी आहे, भले अव्हांखे कुझु बि न हुजे, अवां बिल्कुलु ख़ुशि ठाक ठीक ठाक हलणु फिरणु खाइणु पीअणु 8 शादियूं करे वेठा हुजो त बि अव्हांखे PCR ज़रूरु कराइणी आहे। वजह 5 साल में अवां अख रखी वेठा आहियो त हीअ बीमारी वरी उथले पई त मां दवा कराए हिनखे हिते ई बीहारियां, वरी 3 महीना केरु गोरियूं दवा खाए, त इहा शइ ज़हन में हुजसि।
1: अजाज़र, अव्हांजी नज़र में सिहत जो दुश्मन केरु आहे?
0: सिहत जो दुश्मन असां पाण आहियूं
1: जी। अच्छा, इन जो जवाबु वरी तव्हांखे सिर्फ़ु हिकु लफ़्ज़ में ॾियणो आहे, उनखां पोइ तव्हांखे उन लफ़्ज़ जी वज़ाहत बि करणी आहे तव्हांखे ॾींहं छो।
0: अच्छा, हिन में असांजी सिहत जो दुश्मन केरु आहे? असां पाण आहियूं, हिकु अल्फ़ाज़ में जवाबु पंहिंजी वज़ाहत, असांजो माइदो ख़राबु आहे त असां शहर वञूं था समोसा पकौड़ा देग जा चांवर हर शइ माशाला बिस्मिल्लाह करे खाई वेंदा आहियूं, चांह मानी मंझंदि जे टाइम थी असां चांहि पी वेंदा आहियूं, चांहि पीअण सां असांजे पेट ते गरमाइश गैस थी वियो ऐं मादे ते गरमाइश थी वई, उन खां अलावा जंहिं महिल चांवर वग़ैरह खाधासीं पेट ते भर्ती थी वई छो त असांजे शहर जा जेका चांवर आहिनि उन में मिर्च मसालो आहे, असां चांवर बि खाऊं पिया मथां हिकिड़ो गिलास ॿ गिलास पाणी बि पियूं पिया, त चांवरनि सां गॾु पाणी पेट खे गैस पैदा करे थो छॾे त पेट ते भर्ती थी वई, पोइ आहिस्ते आहिस्ते भर्ती भर्ती भर्ती हा में साड़ो जलन माना बीमारी असां पाण वठी छॾी। बाक़ी आहे त जेमहिल असांजो वज़न जिस्म में जिस्म जो वज़न यादि रखिजो हिकिड़ी शइ, असांजे जिस्म जो वज़न ॾिसूं पिया त आहिस्ते आहिस्ते घटि थिए पियो, त ॿ बीमारियूं आहिनि, हिकिड़ी शुगर हिकिड़ी हेपेटाइटिस सी। शुगर ऐं सी हेपेटाइटिस सी अव्हांजा एतिरा क़दुरु दुश्मन आहिनि, एतिरा क़दुरु दुश्मन आहिनि त अव्हां सां गॾु सॼी ज़िंदगी हलंदा, अव्हांखे महसूसु बि न थींदो त अव्हांखे शुगर आहे, अव्हांखे हेपेटाइटिस सी आहे। तेसीं ताईं अव्हां सां कोन को मसइलो न थी वञे, अव्हांखे को धकु लॻे, अव्हांजो रतु न बीहे, या अव्हांखे ऑपरेशन तां वञो पिया या कंहिंखे रतु ॾियणु वञो पिया, तेसीं ताईं अव्हांखे ख़बर न पवंदी अव्हांखे कारी साई आहे, अव्हांखे शुगर आहे, ख़ामोश माट करे वञे समय पिया हूंदा, उहा इहा सोचींदा अञा मौक़ो अचे पोइ असां तमाशो ॾेखारींदासीं। त इहा शइ ॾिसण जे लाइ सभिनी खां पहिरीं जेका निशानी आहे उहा इहा ई आहे त अव्हांजे जिस्म जो वज़न पहिरीं 80 किलो 70 किलो हो, हाणे आहिस्ते आहिस्ते 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो घटि थिए पियो, त अव्हांखे ही 2 टेस्टूं पंहिंजे जिस्म जी ज़रूरु करणियूं आहिनि।
1: जी डॉक्टर साहब, तमामु बहितरीन मालूमात ॻाल्हि कई आहे डॉक्टर साहिबु, यकीन असांजा ॿुधंदड़ बि हिन मां घणो कुझु सिखंदा हूंदा। साइमिन, हीअ इंतिहाई मालूमात आहे, मालूमाती ॻाल्हि आहे, वाक़ई सिहत बाबति अहिड़ियूं ॻाल्हियूं रोज़मरह ज़िंदगी में तमामु घणी अहमियत रखनि थियूं। डॉक्टर साहिबु, तव्हां जेको आख़िरी सवाल जो जवाबु ॾिनो आहे इहो इंतिहाई मालूमाती हो, यकीन असांजे ॿुधणनि खे बि इन मां घणो को फ़ाइदो हासिलु थियो हूंदो। साइमिन, प्रोग्राम जे आख़िरी मरहले में दाख़िल थी चुका आहियूं, आख़िरी मरहले में डॉक्टर साहिब खां अव्हांखे बि ख़बर आहे, डॉक्टर साहिब खे बि ख़बर आहे, त आख़िर में इहो ई पुछंदा आहियूं त सिहतमंद ज़िंदगी गुज़ारण जे लाइ अगरि असांजे सामान खे अव्हां 3 सलाहूं ॾियो त कहिड़ियूं ॾींदा?
0: 3 सलाहूं सिहतमंद ज़िंदगी गुज़ारण जे लाइ, सोच घंटी परेशानी न कयो, पंहिंजी सोच खे साफ़ु रखो, पंहिंजी नियत खे साफ़ु रखो, पंहिंजे ज़हन खे साफ़ु रखो, पंहिंजे खाधे खुराक थाऊं मल बर्तन इन्हनि खे साफ़ु सुथिरो रखो, पंहिंजे दिलि खे साफ़ु सुथिरो रखो। ॿियनि जे लाइ इख़लाक तमामु बहितरीन हुजे, सुठी ॻाल्हियूं हुजनि। कंहिंजे लाइ भलाई थिए त जल्दी कयो, कंहिंजे लाइ बुराई थिए त माठ करे वेही रहो। इहा शइ सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अव्हांजी सिहत न, अव्हांजी ज़िंदगी न, अव्हांजे कम ऐं किरदार खे, अव्हांजी अव्हांजे मथां अलाह जी रहमत खे वधाईंदा। इन शइ ते अमल करण सां अव्हांजे अलाह जो कुर्ब वेझो थी पवंदो, त जंहिंसां अव्हांजे हर कम में हर शइ में भलाई थी पवंदी। त मुंहिंजी नज़र में इहा शइ अव्हांजे लाइ बहितरीन हूंदी। असामिन प्रोग्राम जो टाइम थी वियो आहे ख़तमु, वरी नादिर साहब तव्हांजे सुवाल जो बि टाइम थी वियो आहे हाणे ख़तमु। हाणे मिलंदासीं सुभाणे अव्हां सां, पर सामिन यादि रहे सुभाणे आहे आचर, आचर वारे ॾींहुं में असांजी क्लिनिक खुलियलु हूंदी आहे सुबुह 9 खां वठी शाम जो 6 वॻे ताईं। अव्हां अची सघो था, का बीमारी आहे उनजे बारे में इलाज कराइणो आहे, इलाज कराए कराए थके पियो, परेशान थियण जी का बि ज़रूरत कोन्हे, छो त परेशानी इहा ई तव्हांखे वधीक बीमारियुनि में मुबतला कंदी, वधीक बीमारियूं अव्हांजा जेको मर्ज़ु आहे उनखे बि वधाईंदी। परेशान थियण जी का बि ज़रूरत कोन्हे, को सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु अव्हांखे हाजी नैथोमोपैथी क्लिनिक ते अची पंहिंजो चेकअप करायो। चेकअप कराइण जो मुरादु इहो आहे त बीमारी जी कंडीशन हाणे छा आहे, बीमारी हाणे केसि ताईं थी चुकी आहे, उन खां पोइ अॻिते नुक़सान छा आहिनि, इन जो इलाजु कीअं थींदो ऐं केतिरे टाइम में इलाजु थींदो, हर शइ चेकअप खां बाद में ई ख़बर पइजी थी वञे। ऐं जेका दवाऊं, जेकी दवाऊं अव्हांखे ॾियणियूं, उहे सभु शयूं ज़ाहिर थी थी वञनि। अव्हांखे कुझु वक़्तु इलाज सां अव्हांजे जिस्म में बाक़ाइदा ईअं महसूसु थींदो त अव्हांजी तबियत पहिरीं खां तमामु बहितरीन फ़ाइदेमंद थी चुकी आहे। त इन जे लाइ अव्हां होम्योपैथिक इलाज जी तरफ़ ज़रूरु अचो, फ़ाइदेमंद आहे, नुक़सानदह होम्योपैथिक इलाज कोन्हे को। बसि फ़र्क़ु इहो आहे त असां अव्हांखे क्लिनिक ते पहुची कंहिं बीमारी जे लाइ इंजेक्शन हणी अव्हांखे थोरे वक़्त जे लाइ ख़ुशि न कंदासीं, असां अव्हांखे दवाऊं अहिड़ी ॾींदासीं जेको अव्हांजी ज़िंदगीअ में दवाऊं, दारू, दवाऊं, गोरियूं, सीरप, कैप्सूल, इंजेक्शननि खां अव्हांखे मुकमल बचाए वञे। अव्हांजी सिहत, अव्हांजी जिस्मानी सिहत, अव्हांजी ज़हनी सिहत बहाल थिए, अव्हां पंहिंजे पाण पंहिंजे बचनि सां ख़ुशि रहो, न के कंहिं डॉक्टर जे लाइ पुछा कुछा कयो त हीउ डॉक्टर सही आहे, हू डॉक्टर सही आहे। त इन जे लाइ होम्योपैथिक इलाज अव्हांजे लाइ तमामु बहितरीन आहे। फ़र्क़ु सिर्फ़ु छा आहे त अव्हां पंहिंजी सोच खे साफ़ु करे नियत रखी अलाह ते होम्योपैथिक जी दवाऊं इस्तेमालु कयो, अलाह अव्हांखे ज़रूरु शिफ़ा ॾींदो। सामिन प्रोग्राम जो टाइम ख़तमु थी वियो आहे, ॿिए प्रोग्राम ताईं मूंखे ॾियो इजाज़त, अलाह निगहबान।
1: तमामु बहितरीन डॉक्टर साहिबु, ख़ूबसूरत अंदाज़ में तव्हां वज़ाहत कई इन शइ जी। बेशक तजुर्बो इंसान जी ॻाल्हियुनि मां ज़ाहिरु थींदो आहे। तव्हांजे क़ीमती मालूमात लाइ तव्हांजा लख थोरा। सामिन, अॼु जे हिन ख़ूबसूरत ऐं ॼाण सां भरपूर प्रोग्राम में असां सां गॾु रहिया सकरण जा मशहूरु ऐं मारूफ़ डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहिबु, जिन पंहिंजे क़ीमती वक़्त मां वक़्तु कढी सिहत बाबति इंतिहाई अहम ऐं फ़ाइदेमंद मालूमात असां सां वंडी। डॉक्टर साहिबु, अव्हांजी आमद बहितरीन रहनुमाई लाइ दिलि जी गहराइयुनि सां थोरा मञो था। उमेदु आहे त अॼु जी कचहरी मां तव्हांखे घणो कुझु सिखण ऐं सम्झण जो मौक़ो मिलियो हूंदो। यादि रखो, सिहतमंद ज़िंदगी ई ख़ुशहाल ज़िंदगी जी ज़मानत आहे। वक़्त जी घटिताई सबबु अॼु जी कचहरी हिते ई पुॼाणी ते पहुती। डॉक्टर साहिब जा दिलि जी गहराइयुनि सां थोराईंदा आहियूं ऐं तव्हां सभिनी ॿुधंदड़नि जा बि शुक्रियो अदा कयूं था जिन असांजो साथ ॾिनो। वरी मिलंदासीं हिकु नई शाम, नई सोच ऐं नए मौज़ू सां। तेसी ॾींदा पंहिंजे मेज़बान नाज़र अली मक्सी खे इजाज़त। अलाह वाही, अलाह निगहबान। जेॾां पेर तेॾां खैरो खैर।

सिंध राउंड अप में अज अवां बुझी सकंदा नेब मलीर में हजारे एकड़ जमीन जे गैर कानूनी अलॉटमेंट जी जांच शुरू करे छड़ी। रेवेन्यू खाते का रिकॉर्ड तलब। सिंध में मैट्रिक जा नतीजा 10 जुलाई ए इंटर जा 31 जुलाई तक जारी करने जो फैसलो। सूबाई वजीर इस्माइल राहू जी सदारत हेठ तालीमी बोर्ड जो इजलास। 1 करोड़ खां वधीक इनाम रखल बदनाम धाड़ेल। बेलो तेगाणी सूधो 60 ॾिहारी पुलिस वट पेश। शिकारपुर पुलिस लाइन में सरेंडर पॉलिसी तहत 60 खां वधीक कचे जे ॾिहारिन हथियार फिटा कया। सिंध जे जेलन में गुंजाइश का वधीक कैदी वाड़ियल। 14,128 जे गुंजाइश अंग 26,959 ते पहुंची वयो। अज खां सजे मुल्क में सख्त गर्मी, हीट वेव जो खतरो। मौसमियात खाते आगाह करे छॾियो। सिंध में पाणी खोट 40% थी वई। वाहन के फराहमी में 34% ताईं कटौती। स्पेशल रिपोर्ट में अवां बुधी सकंदा सालियानी बजट अवामी मुफाद। नेब कराची मलीर जिले में हजारे एकड़ सरकारी जमीन के गैरकानूनी अलॉटमेंट वाले मामले की जांच शुरू कर छी है। अगूणे डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली शाह, बासर शख्स ए जी मजीद खालिद, यूसुफ जई, अमाद दीन चाचड़ समेत बेन के खिलाफ जांच शुरू कदे रेवेन्यू खाते का रिकॉर्ड तलब कर वरतो है। उन हवाले से वरतल जान मुताबिक कराची के जिले मलीर के वे पैमाने से गैरकानूनी जमीन के अलॉटमेंट कई वही है। रेवेन्यू खाते तोड़े लैंड यूटिलाइजेशन खाते जहा कामोरा मुलविस उन्होंने खिलाफ का भी असरायती कार्रवाई वे अर्से नाहे थी सकी। नेब कराची पारा मलीर जिले में हजारे एकड़ सरकारी जमीन के गैरकानूनी अलॉटमेंट करण जाली एंट्रीज रखने वाले मामले की जांच शुरू कर छी है। उन सिलसिले में रेवेन्यू खाते के इख्तियार खत लिखो वो है। बुधाया वो है मलीर के तहलके मुराद मेमण में गैरकानूनी जमीन की अलॉटमेंट वे मामले की जांच शुरू कई वही है। तहलके मुराद मेमण के मुख्तियारकार के खत लिखी जाना वो है तो बुधाया वे 117 एंट्रीज कें नालन से उन जमीन की अलॉटमेंट कदें थी, कड़े नाफितरन उन जमीन की अलॉटमेंट कई है, उह जमीन कड़े मानून के नाले ते आए, उन जमीन की हाँ स्टेटस है। समूर ग्लोबल रिकॉर्ड तलब किया वो है। हजारे एकड़ सरकारी जमीन की गैरकानूनी अलॉटमेंट वाली लिस्ट भी रेवेन्यू खाते के मोकली वही। उन मुताबिक मलीर जिले के दह रोड में 323 एकड़ अतहर अली नाले शख्स के अलॉट करण उन नाले से एंट्री रखने वाले मामले जो रिकॉर्ड डिठो वो। सिंधु हुकूमत मैट्रिक इंटरमीडिएट के नतीजन के तारीखों जो ऐलान कर छो है। यूनिवर्सिटीज तालीमी बोर्ड के सूबाई वजीर इस्माइल राहू की सदारत हेठ सभी तालीमी बोर्ड जो इजलास थो जै दौरान सिंध में मैट्रिक इंटरमीडिएट के सालियाने इम्तिहान जो जायजो वरतो वो। इस्माइल राहू चो तो सिंध के सभी डिवीजनों में मैट्रिक जहा नतीजा 10 जुलाई तई इंटरमीडिएट जहा नतीजा 31 जुलाई तीन जारी क्या वा। नतीजा मुकर वक्त जारी क्या वन जी शागिर्द के वक्त सुर दाखिला में सहूलत मिले। इन तालीमी बोर्ड में शफाफियत मेरिट इम्तिहानी निजाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन सहकार फराहम किया वो। इजलास दौरान वजीर के दिनल ब्रीफिंग में बुधाया वो तालीमी बोर्ड 9 ऐं 11 जमायत जहा नतीजा 31 अगस्त तीन जारी कर छींदी। सिंधु हुकूमत के सरेंडर पॉलिसी तहत कचे के 102 केसन में घुर्बल 1 करोड़ रुपया इनामी याफ्ता बदनाम ॾिहारी बेलो तेगाणी समेत 60 खां वधीक घुर्बल ए खतरनाक ॾिहारिन पुलिस लाइन शिकारपुर में हथियार फिटा कर कानून आडो पेश थिया। उन मौके से SSP शिकारपुर कलीम मलक प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे सरेंडर कदर ॾिहारिन के मीडिया आडो पेश कर सरेंडर पॉलिसी बाबत तफसीली ब्रीफिंग दिनी। SSP कलीम मलक सरेंडर कदर ॾिहारिन में 1 करोड़ रुपया इनामी याफ्ता बिलो तेगाणी 50,50 लख रुपया इनामी याफ्ता अलीगुल तेगाणी मंजूर जाफरी अलहयार नंदवाणी 40 लख रुपया इनामी याफ्ता अब्दुलरहमान तेगाणी 30 लख रुपया इनामी याफ्ता मोहरम तेगाणी जडे 20-20 लख रुपया इनामी याफ्ता वहीद सबजोई मीर शर सुल्तान बिजाराणी बशीर भयो बया केतराई घुर्बल लोहारी शामिल हैं जिन खिलाफ कतुल अगवा फुर धाड़ा पुलिस मुकाबलन बन संगीन नोयत के डोहन जहा केस दाखिल है। इन चो तो सिंधु हुकूमत पारा शुरू कल सरेंडर पॉलिसी जहा मुस्बत नतीजा सामू अची रहा है। मुख्तलिफ केसन में घुर्बल लोहारिन के कानून जो आडो पेश थियण जिले में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए एक अहम कदम है। संस खिलाफ़ दाखिल केसन मूजिब कानूनी कार्रवाई जारी रही खेन अदालत आडो पेश किया वो।
दोहारनि ख़िलाफ़ कार्रवायूं जारी रखियूं वेंदियूं। हुन ॿुधायो त कुझु कबीलाई तकरारनि सबबि मुख़्तलिफ़ ज़ातियुनि सां तालुक़ु रखंदड़ कुझु घुर्बल दोहारी अञा ताईं सिरेंडर न करे सघिया आहिनि, जॾहिं त ईंदड़ फेज़ 3 में वधीक दोहारियुनि जे हथियार फिटा कया वेंदा। सिंध जे जेलनि में गुंजाइश खां वधीक 12,700 कैदी वाड़ियल, 14,128 जी गुंजाइश अंग 26,959 ते पहुतो। रिपोर्ट मूजिबि कराची जे सेंट्रल जेल में 2400 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 7,985 कैदी वाड़ियल आहिनि। सेंट्रल जेल हैदराबाद में 1527 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 3009 कैदी वाड़ियल आहिनि। सेंट्रल जेल लाड़काणे में 650 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 963 कैदी वाड़ियल आहिनि। वुमेन जेल सखर में 20 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 75 औरतूं क़ैद आहिनि। डिस्ट्रिक्ट मलीर में 2200 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिते 5644 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल नारा हैदराबाद में 300 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, उते 547 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल शहीद बेनिंद्राबाद में 100 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 352 कैदी वाड़ियल आहिनि। लाड़काणे डिस्ट्रिक्ट जेल में 150 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 449 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल दादूअ में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, उते 417 कैदी वाड़ियल आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल बदीन में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, ऐं उते 319 कैदी मौजूदु आहिनि। डिस्ट्रिक्ट जेल शिकारपुर में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, त उते 440 कैदी मौजूदु आहिनि। जंहिं ते डिस्ट्रिक्ट जेल नौशहरो फिरोज में 250 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, त उते 546 कैदी वाड़ियल आहिनि। मजमूई तौर ते सिंध जे 23 जेलनि में 14,128 कैदियुनि जी गुंजाइश आहे, जिथे 26,959 कैदी वाड़ियल आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेलनि में 438 औरतूं ऐं 312 कैदी आहिनि, जंहिंमां 68 औरतुनि ते ॾोह साबित थी चुको आहे। हिकु औरत खे मौत जी सज़ा मिलियल आहे, जॾहिं त 368 औरतुनि जा केस अदालत में हलंदड़ आहिनि। सिंध जे मुख़्तलिफ़ जेलनि में क़ैद 312 कैदियुनि मां 8 ते ॾोह साबित थी चुको आहे, जॾहिं त 303 कैदियुनि जा केस अदालत में हलंदड़ आहिनि। सिंध में पाणी खोट 40% खां वधीक थी वई आहे, ईंदड़ 10 ॾींहनि में 50% खां वधण जा इम्कान यकीनी बणिजी विया आहिनि। वावडा ऐं अरसा पारां डेमनि मां पाणी भरण जो सिलसिलो हलंदड़ आहे। काल्ह मुल्क जा पाणी ज़खीरा 4 मिलियन एकड़ फुट ताईं कढिया विया। सिंध जे बैराजनि मां गुडू बैराज ते पाणी जी खोट 28%, सखर बैराज ते 38% ऐं कोटड़ी बैराज वटि 57% वधी वई आहे। सखर बैराज वटां कीर्थर केनाल में 51, राइस केनाल में 39, दादू केनाल में 83, नारा केनाल में 17, खैरपुर लिफ्ट 35, रोहिड़ी केनाल 34 ऐं खैरपुर वेस्ट केनाल में 44% खोट थी वई आहे। कोटड़ी बैराज वटि पाणी आमद 11,645 क्यूसिक आहे ऐं घुर्ज 26,900 आहे। कोटड़ीअ वटां कलेरी फीडर में 52, अक्रमवाह में 58, ओल्ड फुलेलीअ में 49 ऐं न्यू फुलेलीअ में 63% खोट थी वई आहे। गुडू बैराज ते BS फीडर में 49, पट फीडर में 14 ऐं घोटकी फीडर में 12% पाणी घुर्ज खां घटि आहे। CAG केनाल मां कट वधाए 16,500 क्यूसिक कई वई आहे ऐं HTP केनाल वसीले बि तौसा बैराज मां 11,894 क्यूसिक पाणी खयो पियो वञे। काल मंगला डेम में पाणी आमद 43,102 क्यूसिक रिकॉर्ड कई वई ऐं कट 39,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कई वई। तरबेला डेम में पाणी आमद 1,28,400 क्यूसिक ऐं हेठां वहिकिरो 1,10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। काल गुडू बैराज जो मथां वहिकिरो 75,002, सखर बैराज जो मथां वहिकिरो 50,620 ऐं कोटड़ी बैराज जो मथां वहिकिरो 11,645 क्यूसिक रिकॉर्ड कयो वियो। अॼु खां सॼे मुल्क में सख़्तु गर्मी हीटवेव जो ख़तरो मौसमियात खाते आगाह करे छॾियो आहे। 7 जून खां 12 जून ताईं गर्मी जी लहर जो इम्कान आहे। मौसमियात खाते अलर्ट जारी कयो आहे। अलर्ट मूजिबि इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकपाल, झेलम, गुजरात, सियालकोट 8 जून खां 11 जून ताईं गर्मी जी लपेट में रहंदा। नारेवाल, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, झंग, टोबा, टेकसिंग, सरगोधा, मियांवाली, खुशाब, बखर में भी हीटवेव जो इम्कान आहे। अलर्ट मूजिबि लैया, मुल्तान, खानेवाल, साहिवाल, ओकाड़ा, बहावल नगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर पिण मुतासिर थींदा। मौसमियात खाते मूजिबि गर्मी पद मामूल खां 4-6 डिग्री सेंटीग्रेड वधीक रहण जो इम्कान आहे ऐं 7-12 जून ताईं गर्मी पद 44-48 डिग्री सेंटीग्रेड ताईं पहुची सघे थो।
8-12 June ताईं कराची में मौसम सख्त गर्म रहण जो इम्कान आहे ऐं गर्मी पद 40-43 degrees जे विच में रहंदो। 12 June ताईं सिंध ऐं बलोचिस्तान जे कुझु ज़िलनि में गर्मी पद 48-51 degrees ताईं पहुची सघे थो, जॾहिं त ख़ैबर पख़्तूनख़्वा जे मैदानी इलाइक़नि में गर्मी पद 41-46 degrees ताईं वञी सघे थो। मौसमियात खाते शहरनि खे अपील कई आहे त गर्मी तेज़ हुजण सबबि पंहिंजे ॿारनि जो ऐं पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। पेशवा है स्पेशल रिपोर्ट। सिंधु जे सरजमीन खां वठी जबलन जे माथिरिन ताईं जॾहिं बि बजट जी मौसम अचे थी तॾहिं रुगो वज़ीर जा दफ़्तर या इक़्तदार जा ऐवान ई जाॻी नथा पवनि, पर हिकु मज़दूर जी चुल, हिकु उस्ताद जी उमेद, हिकु क्लार्क जो हिसो, हिकु पेंशनर जो थकल निगाह ऐं हिकु ग़रीब माउ जो रधणो बि कंहिं अणॾिठल इंतज़ार में बीह रहंदो आहे। हर साल वांगुरु हिन साल बि क़ौम जे दिलि में उहो ई सवाल धड़की रहियो आहे त छा ईंदड़ बजट आवाम ऐं मुलाज़मनि जे लाइ आसानीअ जो पैगाम आणींदी या वरी सब्र जे सलेब ते लटकाइण वारो नओं फरमान साबित थींदो। पाकिस्तान जी मौजूदा इक़्तिसादी हालति कंहिं अहिड़े मुसाफ़िर वांगुरु आहे जेको कर्ज़नि जे बैठक में बीठो रहियो आहे। हिकु हथ में उमेद ऐं ॿिए हथ में कर्ज़नि जी ज़ंजीर, मुल्क अञा बि आलमी कर्ज़ ॾींदड़ इदारनि जे निगरानीअ हेठि आहे। हुकूमत खे सख़्त माली हदबंदियुनि अंदरि रहंदे बजट ठाहिणी पइजी रही आहे, जिते ख़र्च घटाइण, टैक्स वधाइण ऐं ख़सारो क़ाबू करणु बुनियादी शर्त बणियल आहे। हाणे सवाल उहो थो उभिरे त अहिड़े माहौल में अवामी मुफ़ाद वारी बजट केतिरी हद ताईं मुमकिन आहे। मुशाहिदे मूजिबि पाकिस्तान जे सियासी तारीख़ ॿुधाए थी त चूंडुनि खां परे बीठल हुकूमतूं घणो करे अहिड़ियूं बजटूं आणींदियूं आहिनि जिन में अवामी रिलीफ खां वधीक माली नज़्मो ज़ब्त खे तरजीह ॾिनी वेंदी आहे। सरकारी मुलाज़मनि बाबति सूरतहाल वधीक पेचीदा ॾिसण में अचे थी। हिकु पासे हुकूमती हल्क़नि में अहिड़ियूं तजवीज़ूं ज़ेरे गौर आहिनि जिन में 5% खां 10% ताईं एडहाक रिलीफ पघारुनि में मामूली वाध या कुझु अलाउंस में तब्दीली शामिल आहे, त ॿिए पासे अहिड़ियूं रिपोर्टूं बि आहिनि जिन मूजिबि हुकूमत पघारुनि में वाध बदिरां टैक्स में कुझु रिलीफ ॾिए मुलाज़मनि खे मुतमिन करण जो रस्तो इख़्तियार करे सघे थी। पर हिते हिकु तलख हक़ीक़त बि लिकियलु आहे, जेकॾहिं पघार सिर्फ़ 5-7% वधंदी, जॾहिं मार्केट में महांगाई, बिजली, गैस, पेट्रोल, तालीम ऐं दवाउनि जा अघ वधीक तेज़ीअ सां वधंदा रहंदा त अहिड़ी वाध मुलाज़मनि जे लाइ रिलीफ न पर अंगनि जो फरेब महसूसु थींदी। तारीख़ शायदि आहे त जॾहिं बि हुकूमतुनि वटि माली वसीलनि जी खोट थी तॾहिं आम माण्हूअ जे खीसे ते ख़ामोश टैक्स विधो वियो। पेट्रोल महांगो थियो, ट्रांसपोर्ट महांगी थी, भाॼी, अटो, खंड, दवाऊं ऐं तालीम सभु कुझु आवाम जे वस खां परे थींदो वियो। अॼु उहो ख़दशो मौजूदु आहे त जेकॾहिं आलमी इदारनि जूं शर्तूं सख़्त रहियूं त हुकूमत रिलीफ बदिरां रेवन्यू गॾु करण खे तरजीह ॾेई सघे थी। ज़माने जे तलख तजुर्बे मां एतिरो ज़रूरु चई सघिजे थो त पाकिस्तान जूं बजटूं घणो करे उमेद ऐं मायूसीअ जे विच वारी सरह ते जनम वठंदियूं आहिनि। मौजूदा निशानियुनि खे ॾिसंदे ईअं लॻे थो त हीअ बजट शायदि मुकमल तौरु अवामी या मुलाज़िम दोस्त न हुजे, पर हुकूमत कोशिश कंदी त घटि में घटि एतिरो रिलीफ ज़रूरु ॾिए जो नाराज़गीअ जी बाहि वॾे तूफ़ान में तब्दील न थिए। बाक़ी हक़ीक़ी फ़ैसिलो हमेशह वांगुरु बाज़ारि, बिजलीअ जे बिल ऐं घर जो रधणो

0: हुयो हिन वक़्त ताईं जो सिंध राउंड अप ॿिए आचर जे सिंध राउंड अप ताईं गुलाब खान भेण खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगहबान।
1: आप सुन रहे हैं जी ए एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: हाँ हैरत अंगेज जदीद मशीन जरिए पैंजो चेकअप करायो आई होम्योपैथिक तरीका इलाज सा शिफा हासिल करियो। जी हाँ, हाँ अवाजे पैंजे शहर सकरन में हाजी इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक ते मशहूर मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मैदो जिगर की गर्माइश गुर्दे की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन फालेज शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी बादी बवासीर इन्हें सभी बीमारियों को कामयाब इलाज कयो वेंदो आहे। होम्योपैथिक डॉक्टर हारिश जावेद राजपूत साहब टाइम रोजानो सुबह 9 बजे का शाम 6 बजे तक बरोज जुम्मो 12 बजे तक एड्रेस

0: आज इनायत होम्योपैथिक क्लिनिक स्टेशन रोड सकर वधिक मशोरे ए राबते जे लाए 0327-99-84-700-63।
1: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है
2: सुनते रहो GFM 90.8